FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार दिनांक 27 जून 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे।

0: कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार

0: कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं मधुरवाणी विषय पर आज के विचार।
2: मानव की सबसे बड़ी विशेषता है मधुर संभाषण। हमें वाणी मिली है, हम इसका निरंतर उपयोग तो करते हैं किंतु इसके महत्व को नहीं समझते हैं, इसका यथार्थ मूल्यांकन नहीं करते। हमारे प्रबल पुण्यों का उदय है जिसे हमें वाणी और भाषा मिली है, शब्द संपदा मिली है जिसके बल पर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नीतिकारों ने लिखा है, संसार के कड़वे वृक्ष में दो ही फल अमृत के समान है, वो है सुभाषित मधुर संभाषण और सुसंगति। जुबान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसे सार्थकता प्रदान करना। वाणी की मिठास ही वाणी की सार्थकता है। वाणी की मधुरता पूरे वातावरण में समरसता घोल देती है। इसीलिए कहा गया है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिते वचन कठोर। प्रेम के लिए वचनों की मधुरता अनिवार्य है। वचनों की मधुरता प्रेम का साम्राज्य स्थापित करती है तो वाणी की कड़वाहट शांत वातावरण में भी कड़वाहट खोल देती है। महाभारत भी वचनों के कारण हुआ था। द्रौपदी के ये वचन कि अंधों के अंधे ही होते हैं, दुर्योधन के हृदय में चुभ गए, परिणाम महाभारत हुआ। जिह्वा में अमृत भी है और जहर भी है। वाणी में ऐसी सामर्थ है कि वो पानी में आग लगा थे। विद्वानों का मानना है कि जिह्वा में अमृत बसे, विष भी जिसके पास, एक बोले तो लाख ले, इकते लाख विनाश। हमें अपनी वाणी पर सदैव अंकुश रखना चाहिए। संत कहते हैं, बोलो पर बोलने से पूर्व विचार कर लो। जो व्यक्ति बोलने से पूर्व विचार करता है उसे फिर कभी पुनर्विचार नहीं करना पड़ता है। जो विचार करके करता है वो शूर है और जो करके विचारता है वो घूर है। इसलिए कहते हैं, वाणी का घाव वाण के घाव से भी गहरा होता है। वाण का घाव भर सकता है लेकिन वाणी का घाव कभी भी नहीं भर सकता। जीव की क्षमता को अनर्गल बातें कहने में नष्ट ना करो। उससे वो कहो जिससे तुम्हारा गौरव और सुनने वालों का भविष्य बने। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कर्ण द्वार ते संचरे साले सकल शरीर। जितना बने विनम्र बनो, सरल व्यवहार रखो और अपनी जिह्वा में हमेशा लचीलापन बनाए रखो। आखिर हमारे मुख में कड़वाहट आती कहां से है, ये विचारणीय प्रश्न है। 5 कारणों से आदमी अप्रशस्त वचनों का प्रयोग करता है, क्रोध, लोभ, भय, मजाक और आदत। ये 5 कारण हैं जिनके कारण आदमी अपने मुख से वो शब्द निकाल देता है जिसे उसे कभी नहीं निकालना चाहिए। हम अपनी वाणी में मधुरता लाने का प्रयत्न करें क्योंकि वाणी से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक मधुर संभाषी होगा वो व्यक्ति उतना ही अधिक आदरणीय और प्रतिष्ठित माना जाता है। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे।
1: विचार बिंदु में अभी आपने सुने मधुरवाणी विषय पर आज के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

महादेव की भक्ति केवल एक आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं है, बल्कि ये स्वयं की खोज और अनुशासन का प्रतीक है। शिवत्व का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर होना। जिस प्रकार महादेव विषपान के बाद भी शांत रहे, उसी प्रकार उनकी भक्ति हमें जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। उनकी भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को समाप्त करना, ताकि हम अनंत ऊर्जा से जुड़ पाएं। तो आइए महादेव की महिमा का गुणगान करता ये भजन सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

तन और मन का साथ एक ही नदी के दो किनारे जैसा है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। जब प्रभु की भक्ति तन और मन से की जाती है, तब हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर पाते हैं। मन की भक्ति से जहाँ आत्मा पवित्र हो जाती है, वहीं तन से की गई प्रभु की सेवा एक अलौकिक सकारात्मकता का वरदान प्राप्त कराती है और हम ईश्वर के साथ जुड़ पाते हैं। तो आइए प्रभु भक्ति में स्वयं को समर्पित करते हैं और सुनते हैं विजया चौधरी के स्वर में ये भजन।

भगवान श्री कृष्ण दया और कृपा के सागर हैं। उनका स्वरूप और उनकी लीलाएं अत्यंत सुखदायी हैं। वे दया के ऐसे तालाब हैं जिसमें स्नान करने मात्र से ही जीवात्मा के सभी दुख और पाप धुल जाते हैं। इस माया रूपी संसार में श्री हरि ही हमारे सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक हैं, जो हमें सदैव प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो आइए प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं और सुनते हैं मैथिली ठाकुर और समर्पित गोलानी के स्वरों में ये भक्ति वंदन।

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, जो अपने भक्तों के कष्टों को हर उनके जीवन में सुख की बहार ला देती है। जो भी भक्त उनकी शरण में जाता है वो हर ओर से सुखी और संपन्न हो जाता है। सब पर दया करने वाली उन्हीं माँ को समर्पित ये भजन आइए सुनते हैं इंद्र कुमार नैयर के स्वर में।

संसार की नश्वरता के बीच केवल ईश्वर ही वो एकमात्र सत्य है जो हमें कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। परमात्मा का सानिध्य शाश्वत है। जब मनुष्य जीवन के संघर्षों, दुखों और मोह माया के जाल में फंस जाता है, तब उसे केवल प्रभु की शरण में ही शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। ईश्वर की कृपा ही वो ध्रुव तारा बनती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार इस भवसागर को पार करने के लिए प्रभु का नाम ही एकमात्र सहारा है। तो आइए हम भी प्रभु से विनती करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, और सुनते हैं मयंक उपाध्याय और साथियों के स्वरों में ये भजन।

आप सभी का आज का दिन सुखद और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। आज 27 जून है। आइए जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन किन महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण दर्ज है। आज की बात कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं शोभा पांडे। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमिता दिवस हर वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था, सतत विकास और रोजगार सृजन में इन उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था। श्रोताओं, हर साल 27 जून को हेलेन केलर दिवस मनाया जाता है, जो हेलेन केलर की जयंती का प्रतीक है। 27 जून 1880 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मी हेलेन एडम्स केलर दुनिया भर में दृढ़ संकल्प, प्रेरणा और साहस के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। मात्र 19 महीने की उम्र में एक बीमारी के कारण हेलेन केलर ने अपनी दृष्टि और सुनने की क्षमता खो दी थी। अपनी शिक्षिका एन सुल्विन के मार्गदर्शन में उन्होंने न केवल संवाद करना सीखा, बल्कि वे स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली दृष्टि श्रवण बाधित व्यक्ति बनी। साथ ही वे एक प्रसिद्ध लेखिका, वक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने महिलाओं के मताधिकार, श्रमिक अधिकारों और विकलांग लोगों के कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज पुण्यतिथि है भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासकों में से एक महाराजा रणजीत सिंह की, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके शासनकाल को पंजाब के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके समय में व्यापार, कला और वास्तुकला का खूब विकास हुआ था। 27 जून 1849 को उनका निधन हो गया। आज भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अधिकारियों में से एक सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि है। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में जन्मे सैम मानेकशॉ ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के पहले बैच में दाखिला लिया और 1934 में कमीशन प्राप्त किया। उनका सैन्य करियर 4 दशकों से अधिक लंबा रहा, जिसमें उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध तक अपनी सेवाएं दी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे भारतीय थल सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वे अपने बेबाक स्वभाव और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे और अपने सैनिकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे, जो उन्हें सैम बहादुर कहकर बुलाते थे। वे एक ऐसे अद्भुत कमांडर थे जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और दृढ़ रहते थे। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। देश के प्रति उनकी असाधारण सेवाओं के लिए उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 27 जून 2008 को इस महान योद्धा ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका नाम आज भी हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। श्रोताओं, पीटी उषा, जिन्हें भारतीय एथलेटिक्स में उनकी अभूतपूर्व गति और योगदान के कारण उड़न परी, प्योली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म आज ही के दिन

27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के प्योली गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली उषा का बचपन अभाव में बीता, लेकिन खेल के प्रति उनका जुनून बचपन से ही बहुत गहरा था। वर्ष 1984 का लॉस एंजल्स ओलंपिक उनके करियर का सबसे यादगार पल था, जब वो 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में पहुंची। वो मात्र 1/100 सेकंड के अंतर से कांस्य पदक से चूक गई, लेकिन पूरे देश का दिल जीत लिया, जिसके बाद 1986 के सियोल एशियाई खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता, और इसके बाद वे अपने करियर में आगे ही बढ़ती चली गई। इसी दौरान उन्होंने एशियाई खेलों में कुल 11 पदक जीते, जिनमें से अधिकांश स्वर्ण थे। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त शोभा पांडे। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन से जुड़ा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आसपास मौजूद वो छोटी सी किराना दुकान, वो स्थानीय कारीगर जो हाथ से सुंदर चीजें बनाते हैं, या फिर वो छोटा सा स्टार्टअप जो घर के एक कमरे से शुरू हुआ है, ये क्या है? ये सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन है। इन्हीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये एमएसएमई क्या है। इसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं। विश्व भर में और विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों में एमएसएमई क्षेत्र को आर्थिक विकास का इंजन और रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ये दिवस न केवल इन उद्यमों के योगदान को सम्मानित करने का अवसर है, बल्कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और उनके समाधान पर विचार करने का भी एक मंच है। एमएसएमई क्षेत्र के वैश्विक महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2017 में एक प्रस्ताव पारित किया और प्रत्येक वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 लागू किया, जो इन उद्यमों को परिभाषित करने और उन्हें विनियमित करने का मुख्य आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका अत्यंत व्यापक है। ये क्षेत्र कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जो बेरोजगारी को कम करने में सहायक है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी 45% से भी अधिक है, जो विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करती है। ये उद्यम केवल बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण और अर्थ शहरी क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को शिक्षित करना, छोटे उद्यमियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना, युवाओं और नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शामिल है उद्यम पंजीकरण पोर्टल। ये व्यवसायों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करने के लिए है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू और विस्तार कर सकें। अपनी उपयोगिता के बावजूद ये क्षेत्र अभी भी पूंजी की उपलब्धता, कुशल श्रमिकों का अभाव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इस क्षेत्र के लिए एक नई दिशा लेकर आए हैं। जब हम अपने आसपास के छोटे उद्यमियों का समर्थन करते हैं, तो हम वास्तव में देश की नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। तकनीक, नवाचार और सही सरकारी नीतिगत समर्थन के साथ भारतीय एमएसएमई वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटक यान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसंघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेशारक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ पूर्वीयोत्तरप्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है।

0: इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विवरण हमारे केंद्र से आज दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती, रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन, ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। आपसे कुछ देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ से आज का प्रसंग। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम

7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ से आज का प्रसंग। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम अर्पण, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा सुसज्जित घर प्रफुल्लित मन। दोपहर 1:30 पर आपको सुनवाएंगे नाटक जंगली बूटी। खेती की बातों का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें आज वार्ता का विषय रहेगा आधुनिक कृषि में माइक्रोबायोलॉजी का योगदान। वार्ताकार होंगे संजय कुमार। शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात होगी बॉडी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे हेलेन केलर जयंती पर अल्मोड़ा में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:45 पर, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यमिता दिवस, महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि, प्रीवेनेटिव हेल्थ केयर थ्रू डेली योगा और हेलेन केलर जयंती पर। ज्ञानवाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:00, जिसमें आज की बातें होंगी कृषि में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता, विषय रहेगा खेती बचाव अभियान के अंतर्गत मृदा परीक्षण। साथ ही आज की सलाह के अंतर्गत बात होगी पीएम कृषि सिंचाई योजना पर। इसके अलावा आप सुनेंगे सरकार की 12 वर्ष समेकित कृषि एवं सब्जी उत्पादन विषय पर रमा तिवारी से भेंटवार्ता। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। अंबिकापुर नगर निगम के गार्बेज कैफे के प्रभारी श्री रितेश सैनी से भेंटवार्ता। समय याद रखिएगा रात्रि 8:00। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शास्त्रीय संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर और सुबह 11:30 पर। लोकगीत आपको सुनवाएंगे प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी में, दोपहर 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत में और संध्या 5:05 पर शैल स्वर के तहत। सुगम संगीत आप सुनते हैं प्रातः 10:05 पर, दोपहर 1:15 पर और रात्रि 8:20 पर सबरस के तहत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 9:05 पर गीत निर्झर में, 10:35 पर सुरबहार में, सुबह 11:00 सैनिकों के लिए में, दोपहर 12:00 मेरी पसंद में, दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार में, अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्म गीत में, शाम 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष के तहत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ का 137वां भाग।

क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने उसके लिए क्या अंतर पड़ता है, वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं

अभी आपने सुनी श्री रामचरित मानस गान पाठ की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे उत्तरा केलकर और मिताली सिंह। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंची। इसके पूरा होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद। राज्य में कृषि और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए इफको अपनी भागीदारी बढ़ाएगा और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुँचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब कृषि विकसित होगी और किसान समृद्ध होंगे। वे कल पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित 2 दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व छात्रों से कृषि अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और युवाओं के मार्गदर्शन में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय कृषि, छोटे जोत, जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान, पलायन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका समाधान अनुसंधान और नवाचार से संभव है।
1: क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्य में सहयोग करें, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं।
0: कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने पंतनगर संग्रहालय स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, विद्यार्थियों से संवाद किया तथा धान की रोपाई में भी हिस्सा लिया। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 प्रमुख सड़क परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। स्पर 2 हरिद्वार और हरिद्वार बाईपास परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में जाम की समस्या कम होने के साथ श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: NHAI के अनुसार 51 किलोमीटर लंबी 6 लेन स्पर 2 हरिद्वार परियोजना का लगभग 92% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के तहत 46 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। यह मार्ग दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे को हरिद्वार से जोड़ते हुए हलगोया मुस्तकम से बरेली राजपूताना राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तक जाएगा। इसके शुरू होने से दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों को हरिद्वार के भीतर प्रवेश के बिना वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। वहीं 15 किलोमीटर लंबे हरिद्वार बाईपास परियोजना के पहले चरण का लगभग 77% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के तहत अब तक 9 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा चुका है। भादराबाद से चंडी देवी मंदिर के निकट तक बनने वाले इस बाईपास के शुरू होने से हर की पैड़ी, चंडी चौक और शंकराचार्य चौक सहित शहर के भीतरी क्षेत्रों में यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है। NHAI का लक्ष्य अर्धकुंभ 2027 से पहले इन सभी परियोजनाओं को पूरा कर हरिद्वार में सुरक्षित, आधुनिक और सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराना है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: सप्ताहांत के दौरान कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने विशेष यातायात और डायवर्जन योजना लागू की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में जारी यातायात व्यवस्था के अनुसार अल्मोड़ा और रानीखेत की ओर से हल्द्वानी आने वाले भारी वाहनों को क्वारव और खैरना से रामगढ़ मुक्तेश्वर मार्ग की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले आवश्यक सेवाओं के भारी वाहनों को निर्धारित मार्ग से संचालित किया जाएगा, जबकि अन्य भारी वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर मस्जिद तिराहा भवाली से रोका जाएगा या रामगढ़ और खुटानी मार्ग से भेजा जाएगा। भीमताल मार्ग से कैंचीधाम जाने वाले निजी वाहनों को विकास भवन पार्किंग तथा गेठिया नैनीताल मार्ग से आने वाले वाहनों को भवाली सैनिटोरियम पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। वहां से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सप्ताहांत के दौरान कैंचीधाम क्षेत्र में टैक्सी और दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगेगी।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स

0: व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राज्य में कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी के बीच बैठक हुई। बैठक में इस संबंध में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में डॉ. धन सिंह रावत ने इफको से राज्य में कृषि और सहकारिता गतिविधियों में सहयोग बढ़ाने तथा किसानों के हित में प्रदेश भर में खेत बचाओ जीवन बचाओ अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने का आग्रह किया। इस दौरान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को वैज्ञानिक और सतत कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने उत्तराखंड में शीघ्र ही एक बड़े किसान सम्मेलन के आयोजन की बात कही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों के लिए गरज चमक, तेज बारिश और झोंकेदार हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 30 जून तक पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर तथा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान जताया है। 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत आज और कल पौड़ी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तथा विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। वे आज सलाना, बड़ियों, चमगांव, कालों, मथौली, पिपलौड़ी, सैंजी, नौठा और थलीसैंड क्षेत्र में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान बजवाड़ में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन, बड़ियों सड़क का शिलान्यास तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत पटौटी मथौली सड़क के डामरीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत कल थलीसैंड में क्षेत्रीय ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भाग लेंगे और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसी दिन ग्राम जल्लू में सड़क डामरीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के विकास तथा विभिन्न जनहित और सामरिक विषयों पर चर्चा हुई। श्री उनियाल ने सीमांत क्षेत्रों के विकास और राज्य के सामरिक महत्व को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्रगति और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार का सहयोग राज्य के विकास को नई दिशा दे रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के प्रति सहयोग और मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंची। इनके पूरा होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद। राज्य में कृषि और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए इफको अपनी भागीदारी बढ़ाएगा और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए पूरन चंद्र का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: लोकमंजरी कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए कमला देवी का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए पूरन चंद्र का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

कमला देवी के गाए इसलिए लोकगीत के साथ हमारा आज का कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है, लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायु

0: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो तथा

0: सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित उमाशंकर मिश्र का सितार पर बजाया राग नट भैरव। आपके साथ तबला संगत की थी मदन मोहन उपाध्याय ने। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में दो सैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं।

0: जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताज शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। भारत का कल मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 2 बार का विश्व विजेता उरुग्वे ग्रुप एच के अंतिम मुकाबले में स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर राउंड 32 में पहुंच गया है। इससे पहले ग्रुप आई के मैच में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फरमाइश हमारा अंदाज, सच चुके हैं आज के सुर और साज। गीत वही जो आपके दिल को छू जाए। चलिए करते हैं संगीत का आगाज।

समीर का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया, रन फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं कट्टा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी और मायरा सुरेशी, दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नो साबरी, इरम साबरी और अमन साबरी, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और पूजा कटक।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने सुना साथिया फिल्म का ये गीत। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार थे ए.आर. रहमान और आवाज़ थी सोनू निगम की। इस गीत की फरमाइश हमें की थी जिला झारखंड गांव सोपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश ताती, निशा, रेशमा, प्रीति और देवेंद्र ताती ने। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु, प्रिया, मेघा, राशि, माधुरी, किरण और देवाश्रय ने। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग और तानिया नारंग ने। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज चहाने। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा वीर जारा फिल्म का ये गीत, आवाज है उदित नारायण की। इस गीत को सुनना चाहते हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजी जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी, हीना कौसर, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, सनावत जिला खारगोन मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, कृष्णा विराज अर्णव, कृतिका काव्यांशी और प्रभा कटारिया।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए आशिक फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे बोलों को सुरों में पिरोया है संजीव दर्शन ने और आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत की फरमाइश हमें की है बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, बिलाई छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जालंधर से अशोक जाटव और प्रमिला जाटव ने, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से शिबू बंछोर, प्रियंका बंछोर रघुवीर नगर दिल्ली से, श्रुति ओबेरॉय सृष्टि ओबेरॉय रिंगनी छत्तीसगढ़ से सुनील कुमार और आशा देवी, नई दिल्ली से स्वीटी छापड़ा इंद्रजीत कौर छापड़ा, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप शिवांश गोप संगीता गोप लीमी गोप और दीपाली गोप ने, ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, काजल पूर्वी हेजल राजेश साहू और रेशमा साहू, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और स्वाति येले ने, शेरी वन अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।

कार्यक्रम की अगली पेशकश इन सभी श्रोताओं की पसंद पर दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग सुलोचना और चार्वी सांवले, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, रजनीश मनीष नीतीश बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी, कडला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी पूजा और पायल, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी योगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा और तुलसी गोस्वामी। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहब्बती फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है जतिन ललित ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम का संगीतबद्ध किया त्रिशूल फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और यसुदास की और बोल साहिर लुधियानवी के हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं फुल चिंचौली पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी और दिलशाद मुलाणी, रोहिदास शौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के, सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर और आसमा श्याम कुंवर, दतरंगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, लोनी चचेरी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम और शिवम कोलाम, श्रीरामपुर से अशोक कुम्भार, अविका जीविका और सानू कुम्भार, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा।

कार्यक्रम की अगली पेशकश इन सभी श्रोताओं की पसंद पर जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामले, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामले, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चौंसलिया, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, आदर्श नगर बटिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, बल्लापुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर, उमी भारशंकर, समीक्षा भारशंकर, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। आप सभी सुनना चाहते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया, क्या कहना फिल्म का एक गीत।

लीजिए अब अगला गीत किक फिल्म से। गीतकार हैं मयूर पुरी, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया और आवाज़ है मोहम्मद इरफान की। इस गीत की फरमाइश हमें की है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार ने, नाज मंजिल मेहसोल, सीतामणि से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख ने। इस गीत के इंतजार में है छत्तीसगढ़ भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा, मानवीडा रोड रामपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकित भटकर और अनिकेत, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रिकर, अमर ताम्रिकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, संजीव वर्मा, पवन यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते हैं। लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, संजू सामिया, आफिया, मुमताज जमा, नीलोफर, शन्नो और शपो।

कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं एक नजर फिल्म का ये गीत, जिसे सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। इस गीत की फरमाइश हमें की है मोरवा समस्तीपुर बिहार से भाईकारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती और आकर्षण ने। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक नंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का और कुनिका सिक्का ने। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी कुमकुम और कुमारी साक्षी।

एक नज़र फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत नजर यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त शोभा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे।

0: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबो वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गुलाम अली के गाए इस नगमे के साथ।

0: एक निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं,
1: विश्वास जगाएं।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सप्रंग। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जीवन आर्य का गाया ये नगमा।

आबिदा परवीन के गाए इसी नगमे के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारी देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2026 के तहत प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों और रूपरेखा की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सहकारिता से समृद्धि थीम के अंतर्गत 29 जून से 6 जुलाई तक प्रदेश भर में जन जागरूकता, किसान हित, महिला सशक्तिकरण और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने और सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में प्रयास तेज करने को भी कहा। चंपावत में वर्षा काल के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एसएसबी और एसडीआरएफ ने संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास किया। टनकपुर के ठुलीगाड़ में आयोजित ओपीएस अलर्ट एक्सरसाइज के तहत एसडीआरएफ ने खोज एवं बचाव कार्यों से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। संयुक्त अभ्यास के दौरान एसडीआरएफ ने आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों, खोज एवं बचाव तकनीकों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार, घायलों को सुरक्षित निकालने, नदी और दुर्गम क्षेत्रों में बचाव कार्य तथा रस्सियों के माध्यम से सुरक्षित निकासी जैसी तकनीकों का भी अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ साथ आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में सीवरेज कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर पेयजल निगम द्वारा दिन रात सड़क पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए हैं कि सीवरेज

0: कार्यों के कारण खोदी गई सभी सड़कों की मरम्मत जल्द पूरी की जाए। इसके अनुपालन में KFW वित्त पोषित हरिद्वार जलोत्सारण योजना के तहत सड़क पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। परियोजना प्रबंधक निर्माण और अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम मीनाक्षी मित्तल ने बताया कि 25 जून को पैकेज 1 और पैकेज 2 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 317 मीटर सड़क पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया गया। चमोली जिले के नारायणबगड़ मुख्य बाजार में अतिवृष्टि के बाद राहत बचाव और सफाई कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार घटना में किसी प्रकार की जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। बुधवार देर रात हुई अतिवृष्टि के कारण देवकसकला गांव से मलबा नारायणबगड़ मुख्य बाजार में पहुंच गया, जिससे बाजार का एक हिस्सा प्रभावित हुआ। मलबे के कारण सड़क किनारे खड़े कुछ दोपहिया और चौपहिया वाहनों में मलबा भर गया तथा कुछ दुकानों में पानी और मलबा घुस गया। जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें मौके पर राहत और पुनर्स्थापन कार्य में जुटी हैं। मुख्य मार्गों से मलबा हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है ताकि यातायात और जनजीवन जल्द सामान्य हो सके। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निजी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान के साथ कृषि भूमि और फसलों को हुई क्षति का सर्वेक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा सके। प्रशासन ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण पेयजल आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी, जिसे बहाल करने का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। चंपावत में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के अद्यतन का कार्य तेजी से जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जिले में गणना प्रपत्रों के वितरण का 99.87% कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्राप्त गणना प्रपत्रों के ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक कुल प्राप्त प्रपत्रों से 86.34% का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। आज के इस कार्यक्रम में एक ही कलाकार के अंतर्गत हम बात करेंगे पार्श्व गायक अरिजीत सिंह की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम एक ऐसी आवाज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले एक दशक से हर दिल में अपनी जगह बनाई है। चाहे वो प्यार की तड़प हो, दोस्ती का जश्न हो या फिर दिल टूटने का गम, उनकी आवाज़ हर जज्बात को एक नया नाम देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायक अरिजीत सिंह की। आइए सुनते हैं इनका और अरमान खान का गाया धुरंधर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, पार्श्व गायक अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के जियाजगंज में हुआ था। एक छोटे से कस्बे से निकलकर पूरी दुनिया में छा जाने का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में अरिजीत सिंह ने 2005 में फेम गुरुकुल रियलिटी शो से अपने गायन की शुरुआत की थी। शुरुआत में उन्हें काफ़ी रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था। वे मुंबई आए और काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रीतम दा जैसे संगीतकारों के साथ म्यूजिक प्रोग्रामिंग सीखी, यानी वे सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि एक मास्टर साउंड इंजीनियर भी बने। इसी तकनीकी समझ ने उन्हें बाकी गायकों से अलग बनाया। लीजिए सुनिए इनकी आवाज़ में छिछोरे फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह का सफ़र आज बॉलीवुड के शिखर पर है, लेकिन ये पहचान मिलने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा। 2011 में फिल्म मर्डर 2 के गीत फिर मोहब्बत से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन असल जादू चला 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 के गीत तुम ही हो से, जिसने रिलीज होते ही हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस गीत ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार ही नहीं दिया, बल्कि रोमांटिक म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी। अरिजीत सिर्फ एक गायक ही नहीं, वे एक इमोशन है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे बेहद ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। अपने करियर की बुलंदी पर होने के बावजूद उनकी सादगी और विनम्रता उन्हें बाकी सब से अलग बनाती है। आइए सुनते हैं उनका गाया ये गीत, जिससे उन्हें हर घर घर में पहचान मिली आशिकी 2 फिल्म से।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह की खासियत है उनका सादगी भरा व्यक्तित्व और उनकी गायकी में बसी रूह। वे सिर्फ गाते ही नहीं हैं, वो हर गीत में अपनी आत्मा डाल देते हैं। चाहे वो चन्ना मेरेया की गहराई हो, हवाएं का सुकून हो या केसरिया की मिठास, अरिजीत सिंह ने साबित किया है कि संगीत वाकई रूह की खुराक है। उनकी आवाज़ में वो गहराई है जो हर जनरेशन के इमोशंस को सटीक तरीके से बयां करती है। संगीत के प्रति उनकी ये दीवानगी ही उन्हें एक लेजेंड बनाती है। वे मानते हैं कि संगीत एक तपस्या है, कोई दिखावा नहीं। आइए सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, ए दिल है मुश्किल, फिल्म से।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह का सफ़र हमें ये सिखाता है कि अगर आपके काम में लगन और मेहनत का जुनून है और आप अपनी कला के प्रति ईमानदार हैं, तो सफलता देर से ही सही लेकिन आपके कदम जरूर चूमेगी। उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। 2025 में कला में योगदान के लिए अरिजीत सिंह को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में एक विलन फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त शोभा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना क्रांति फिल्म से। आवाज थी महेंद्र कपूर और साथियों की, शब्द रचना संतोष आनंद की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए कॉकटेल फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं कविता सेठ और नीरह श्रीधर की। इरशाद कामिल के लिखे बोलों को सुरों में पिरोया है प्रीतम ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए तुलसी कुमार और केके का गाया रेडी फिल्म का ये गीत। शब्द नीलेश मिश्रा के हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रेड फिल्म से, राहत फतेह अली खां की आवाज़ में, शब्द रचना मनोज मुंतशिर की है।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए रावण फिल्म का ये गीत शाफकत अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर और साथियों की आवाज़ों में। शब्द रचना विशाल ददलानी की है और संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

0: कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म का ये गीत। आवाज है जावेद बशीर की, शब्द रजत अरोरा के हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने।
1: इश्क वो

शुरू दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार पर बजाया राग गुज्जरी तोड़ी। आपके साथ तबला संगत की है कुमार लाल मिश्र ने।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी। तबला संगत करता थे कुमार लाल मिश्र।
1: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, संगीत एक परंपरा है, समृद्ध विरासत है, इसका प्रवाह चलायमान है और इस प्रवाह में गायन, वादन, नृत्य की तीनों अनुपम कलाओं का समावेश है। फिल्मी दुनिया में इन परंपराओं को कभी विरासत के रूप में तो कभी उदयमान कलाकारों की वजह से हम जानते हैं इस परंपरा को। और परंपरा, विरासत, धरोहर का जिक्र हो तो संगीत के गायन की धारा को अपने अंदाज में सजाया सवारा है नितिन मुकेश ने, जो कि मशहूर पार्श्व गायक मुकेश जी के पुत्र हैं और आज 27 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो नितिन मुकेश जी को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज मेरी पसंद सजा है उन्हीं के पार्श्व गायन के विविध अंदाजों के साथ।

तो श्रोताओं, 27 जून 1950 को जन्म हुआ नितिन मुकेश का, और जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो भारतीय फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक मुकेश के पुत्र हैं। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से गायकी की बारीकियां सीखी और एक सफल गायक बनने का ख्वाब संजोया। मुकेश जी का जब निधन हुआ तो उसके बाद संगीत जगत में एक खालीपन सा आ गया, और अचानक उनके निधन ने सभी को झकझोर दिया, और ख़ासकर उनके निधन से लता मंगेशकर बेहद दुखी हुई। उन्होंने मुकेश जी के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय शो पहले से ही तय किए हुए थे, जिन्हें वो शुरुआती तौर पर रद्द करने का विचार कर रही थी, लेकिन अपने पेशेवर प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, और इसी फैसले ने नितिन मुकेश की ज़िंदगी बदल दी। लता मंगेशकर ने तय किया कि वो इन शो में अकेले नहीं जाएंगी, बल्कि मुकेश जी के पुत्र नितिन मुकेश को अपने साथ मंच पर ले जाएंगी। और ये कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी ने मंच से दर्शकों को बताया कि मुकेश जी भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए वो उनके बेटे के साथ संगीत यात्रा आगे बढ़ा रही हैं, और ये उनका कहा हुआ जो उनके शब्द थे वो नितिन मुकेश जी के ज़िंदगी के लिए बेहद कामयाबी का सफ़र लेकर आए, और बहुत ही ख़ास रहा उनका ये सफ़र। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके सफ़र की शुरुआत हुई। इसके बाद नितिन मुकेश जी लता मंगेशकर के साथ दुनिया के कई देशों में प्रस्तुति देते रहे, और इस अनुभव ने उन्हें उनके करियर में नई दिशा प्रदान की। और फिल्मी दुनिया की बात करें तो लता जी ने अपने साथ उन्हें गाने का मौका भी दिया, जैसा कि फिल्म नूरी का ये गाना बेहद चर्चित रहा। आज भी जब हम सुनते हैं तो एक खूबसूरत से एहसास से भर जाते हैं।

श्रोताओं, 80 और 90 के दशक में कई लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज़ से सजाया नितिन मुकेश ने। यूं तो उनके गानों की एक लंबी फहरिस्त है, जो गाने बेहद चर्चित रहे उनका जिक्र हम करना चाहेंगे। माई नेम इज़ लखन, राम लखन फिल्म से, और आईना फिल्म का दिल ने दिल से कहा, इस जहां की नहीं किंग अंकल सो गया, आसमां तेजा फिल्म, जिंदगी हर कदम मेरी जंग, जिंदगी की ना टूटे लड़ी क्रांति, आजा रे मेरे दिल बराजा नूरी फिल्म से, जो अभी अभी आपने सुना, बेवफा सनम, वफा न रास आई, तेरी झील सी गहरी आँखें, धुएं की तकदीर जैसी, धुएं की लकीर जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू चलाया।

तो महान गायिका लता मंगेशकर जी के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही नितिन मुकेश जी की, और कई बेमिसाल गानों को उन्होंने साथ साथ गाया। लता जी के अलावा आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अलका याग्निक जैसे दिग्गज गायिकाओं के साथ भी सुर मिलाए नितिन मुकेश जी ने। और कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी बताया है कि बेशक वो गाने बचपन से गाते थे, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने लाने का श्रेय उनके पिता मुकेश जी के कमिटमेंट और लता दीदी के साथ को जाता है, क्योंकि उन्हीं के साथ उन्होंने दुनिया भर में अपनी गायकी से लोगों को प्रभावित किया।

तो श्रोताओं, अपनी बेहतरीन आवाज़ से तमाम फिल्मों को सजा चुके हैं नितिन मुकेश। और गायकी की बात करें तो उन्होंने फिल्मी गानों के अलावा भजन भी गाए हैं। शास्त्रीय संगीत से सजे हो या फिर लोक संगीत, हर तरह के संगीत से सुर साधा नितिन मुकेश जी ने।

तो अपने दौर के जाने माने पार्श्व गायिकाओं के साथ जहां नितिन मुकेश जी ने सुर से सुर मिलाए, वहीं बॉलीवुड के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी उन्होंने अपनी आवाज़ का सम्मोहन जारी रखा। उनमें चाहे खयाम हो, आरडी बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, आनंद मिलिंद जैसे महान संगीतकारों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ के साथ सुर साधा।

नितिन मुकेश जी ने अपने दौर के चाहे इस दौर के कई कलाकारों को अपनी आवाज़ से सवारा, जैसे मनोज कुमार, शशि कपूर, जितेंद्र, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सचिन और चंकी पांडे, गोविंदा जैसे कई कलाकारों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी।

तो श्रोताओं, अपनी बेशकीमती आवाज देकर अनगिनत लोकप्रिय कर्णप्रिय गानों को सदाबहार बनाया जाने माने पार्श्व गायक नितिन मुकेश जी ने। आज उन्हें उनके जन्मदिन पर एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यही कामना करते हैं कि वो अपनी आवाज का अंदाज आगे भी अपने गानों के जरिए हमें दिखाते रहें, सुनाते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मेरी पसंद का सफ़र अंजू पांगती के साथ यहीं तक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण।

0: अपन कार्यक्रम सुनने सब रेडियो दगड़ियों को मीमन जुबोराक प्यार भरी नमस्कार। स्वागत छो दगड़ियों अपु सब जानिया अपन मन पसंद कार्यक्रम अपनक आजक अंक में। दगड़ियों बेपुर बे का बात छू कि मैं कह कामल द्वार जाग जा रो छी। वहाँ मिक्र मिल पड़ी मेर नंची नाक दगड़ी भेट घाट है वो मिका अपुर घर ले गए। आहा भीतर चांचो जब तो चाहिए रहो हर कमरों को इधर भली भां सजाई हो कि आंखें जाने जाने नहीं थकने। दगड़े उलह कीमती कीमती सामान क्या बिहार बटी जी की लाई है कदू जी हाथला बनाई है। बची खुची उन्हीं टुकड़ों फूल फूलदान फूलक डलिया द्वारुक बंधनवार मेजपोश आहा रंग बिरंगी सुंदर सजावट और तो और दगड़े फटी फूटी लुकड़ाक ने प्रयोग करी है। उमो बटी द्वार जस निकाल भेर हर देख लीजिए पायदान बढ़ाई है। आई अल्पना आलेख एपुण चित्रकाली ने सजाई है। दगड़े जब मिल पूछो कि कभत कर छे या सब तो कूण फैटी किले तिल नहीं सोने सुसज्जित घर तो प्रफुल्लित मन। यह बात तो बिल्कुल सही छू आपूला मानो होना लाने कि जब घर भीतर सब सामान इथा उथा फैली हूँ अव्यवस्थित हूँ तब कोई ले सामान अपन जाग पर नहीं मिलन और यस में शरीर और मन में ले थाकी थाकी जस लागू यार कदू का कामों बज हुनल हमर खोर में। और मैं जब पूरा घर व्यवस्थित सब सामान ठौर पर धरी हूँ घरक देई द्वार चौखट अलमारी सामान धरनी जग सब भली बाँ धरी हो जब तो घर सुसज्जित लागू बड़ प्यार लागू और जबत करे जो चीज चें वो झट गड़े मिल ले जाए तब आंगले हल्के जितायू मन में भल जस लागू। दगड़े यह जो घरक काम हूँ यह कब है पुरतो नहीं हूँ के ना के तो लागे रहूँ लेकिन अगर परिवारक सब जानी मिल बांट भेर अपन अपन हिस्सा काम कराल अपन जिम्मेदारी समझाल घर का व्यवस्थित धराल तो निश्चित रूपल घर सुसज्जित लहल और व्यवस्थित ले तब आल आनंद और प्रसन्नता। तो दीद बोलियो यह बात एक चर्चा तो हम आप लोगों दगे है गे बे अपनों कार्यक्रम में आगे और आगे सुनो यह संदेश।
1: सुनील घर तो चमक रहा है भाई नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज
2: बल्ब्स प्लग्स सॉकेट्स केबल्स सब ISI
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला
2: बिल्कुल बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब जागो ग्राहक
3: जागो। QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

लगड़ियो अल्ले हमुल सुनो यो लोक गीत जय कलाकार छी सुरेश प्रसाद। अब कार्यक्रम में आगे सुनो एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जय विषय चू।

0: स्वयं के लिए भी जीना सीखे। यह विषय में हमर जगह बातचीत करण लाग रही एक ग्रामीण महिला श्रीमती इंदिरा जोशी तल्ला खुलटा अलमरबटी।
1: सबु हमर पहली तो दे स्वागत छू अब हमर कार्यक्रम अपनक आजक अंक में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: दी। जब हम बात करनो एक महिला अखबार में तो आज महिला कहाँ बटी कहाँ पूछ रहे धरती बटी चांद ले एक महिला छुएला जो काम क पहली बटी हम सोची कि यह काम को क्या महिला कर रहे हैं यह काम तो मैं सोच छू लेकिन आज बिल्कुल परिभाषा बदली है। हर काम को महिला करण लग रहे और हर ऊ जाग पूछ रहे जो बारे में हमूल कभी सोच लेने रहे थी। हर जाग में महिला अपन कर्तव्यों दगड़ दगड़ है अपन आत्म सम्मान के लिए उड़ान भर रहे। अगर हम साधारण रूप ले सोचू और देखू तो मैं ये जान चाहूंगी कि आपको ये बताओ अपन अनुभव के आधार पर कि एक महिला कदरूप होनी।
2: ये महिला कदरूप होनी। महिला करुणा मले हैं, प्यार मले हैं, सहकारी मले हैं, सहयोग ल दे त्याग ल करे ममता रूपी ल है। महिला आज महिला आपो रूप उनको फिर पछाण भैये और दबी निरून हर कार्य में सहयोग दे और आगे का बढ़े। बस जरा सा हो परिवार वाला सहयोग दे दो तो वो परिवार साथ साथ अपन हुनर ल दिखे। महिला पहल रूप छू करुणा वी दिल में दया है सबो निजी दया भाव हूँ कति लगा कर विपत्ति में नहीं दिख सके। दूसरा रूप हूँ प्यार अब बच्चों को लो प्यार करें परिवार सदस्य को लो प्यार करें और आपको साथ साथ जो लो परेशानी में हो उकलो प्यार करें। तीसरा रूप हूँ सहकार सबको सहयोग दें सब मदद करें दगाड़ में हिटें और सब मदद करें। चौथ रूप हूँ त्याग त्याग करना जाने चाहे बचपन बटी छू हर कोई चीज अगर वी पास ले छू वी वील दोहर का अगर आराम हूँ तो वो आराम मल दी दे कोई मलाल नहीं करे उनको दियो। त्याग करना जाने हर क्षेत्र में ममता महिला है सबको प्यार करें ममता भी दिल में भरी हूँ अगर कति कोई विपत्ति में हो तो ममता रूप में आपको दुख नहीं देखें सब सहयोग कर रहे निकल जाए यह वील सैनिक कदो रूप।
1: बिल्कुल सही बात कह दी अबुल एक महिला तो बहुत रूप होनी और ममता मई रूप तो हम बिल्कुल आपको गांव घरों पर देखना आपको बाखे में देखना। आज ले हमारा गांव घर अलग अलग घरों रूप में नहीं जा रही एक गाँव को एक परिवार मानी जाए। आज ले अगर एक घर में कोई कार्यक्रम है जब सब गाँव वाल निभुने के लिए वहाँ जुट जानी और सब हुए ठुल संख्या में वहाँ आपको जहाँ पुरुष देखेनी वे उदू का संख्या में महिला ले देखेनी रात पर्व है दूसरा घर पुजाने की लाओ दीदी बेणी काकी ठुलिजा के काम छू मिला करनू कभी तो यह वे त्यागक रूप ले छू सहयोगक रूप ले छू वे ममता रूप ले छू अब ममता लुटून में ले वो कत्ती कंजूसी नहीं करें। बिल्कुल सही बात कहे कि महिला कदू का रूप होनी अब महिला कदू का रूप तो होने चिंदी लेकिन बखत इन्हे से नहीं रोने बखत बदे जान जैसे राती हैं दोपहर हैं ब्याव हैं इसी का हमारे जीवन में लेके उतार चढ़ाव होने कभी दुख हूँ कभी सुख हूँ कभी भल हूँ कभी नख हूँ तो सदा तो एक न से रही ना तो उभत करे एक महिला के लिए मिले महिला जो आपू ले छा हम लोग लगे कई रूपों में आ जानू हमारे वाणी में अंतर आ जा हमारे हाव भाव में अंतर आ जा तो एक महिला अलग अलग रूप है जानी तो कभत करे भी रूप कस कस हूँ आपको अपने अनुभव के आधार पर बताओ।
2: मैं ये शहर छू घर में गृहणी तौर पर छू कोई जॉब मन हा लेकिन घर में जो शहर रहे या जॉब वाली ना जो होनी जब घर में रोनी तो ग्रह लक्ष्मी होनी और जब रसोई में जानी या खान पकुनी तो अन्नपूर्णा है जाए और जब ब्याल कर नांथी नोनी या रत्ता उनको पढ़ाई लीजिए तैयार कर भी भेजे तो वह सरस्वती रूप में है जाए अपन नांथिना कला पढ़े और किचन में अन्नपूर्णा है लेकिन आप अस्तित्व रक्षा लीजिए या आप बच्चों रक्षा लीजिए वो कालिका रूप में आ जाए वे रूप हर शरण में आ जाए विपत्ति आई जब वो कालिका रूप में आ जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात छू कि जहाँ हम ग्रह लक्ष्मी सरस्वती और अन्नपूर्णा हूं वे अपन अस्तित्व रक्षा लीजिए हम साक्षात कालीला बढ़ जानू और बने ल जाए क्योंकि जब हम अपना अधिकारों लीजिए आवाज नहीं उठूल जब दूसरा हमारे लीजिए कैसे यार पहली तो यही होने कि हम एक कदम बढ़ूल तब तो दूसरा ले दू कदम बढ़ा फिर हमारे हाथ के थामल हमें पिछड़ा है जुलो जब दूसरा हमारे हाथ के कसी थामल अपन अस्तित्व रक्षा लीजिए अपन स्वाभिमान रक्षा लीजिए हर महिला का आवाज उठून जाए और आगे बढ़न जाए यह में हमारा सहयोग कैसे कर सकते परिवार अन्य सदस्य।
2: बिल्कुल सही बात कहे अपन महिला हर रूप में है लक्ष्मी ले है सरस्वती ले है और काली ले बढ़ जाए लेकिन परिवार वाल अगर भी थोड़ी सी हेल्प कर दियो सहयोग करो तो बहुत बात है आपो आपो काम के अगर सब जानी करो तो महिला के ला आपू लीजिए टाइम निकल जा हो तुम सही कहो महिला के आपो हुनर दिखोने लीजिए थोड़ा सा परिवार वाला अगर सपोर्ट कर दियो या साथ वाला सहयोग कर दियो तो महिला आपो हुनर दिखाने जी को टाइम ले मिल जा और भी इच्छा ले है आपो इच्छा लो आपो हुनर दिखे लेकिन अगर सहयोग नहीं दियो तो वो पतन लागन के मेरे क्या हुनर से मैं पार करने तो थोड़ा सब सब अपन काम करो तो महिला अपन हुनर को वो दिखा सके कर सके सब महिला में के हुनर जरूर छुपी हूँ कोई महिला यश ने जो

0: या उनको के नहीं हो तो ये लीजिए आगे लोन चाहे दीदी ये सब बोल।
1: बिल्कुल सही बात कह अबुल की के न के हुनर तो सबू में छो कह ओ हुनर के तरासन में परिवार सहयोग मिल जा क्या गने मिलन लेकिन हुनर सबू में हूँ। यह बात तो सही छू की आज अगर महिला आगे बढ़ने तो अपन परिवार सहयोग कारण आगे बढ़े और परिवार सहयोग मिलन ल जाए दी बहुत कुछ हो महिला के पास शक्ति रूप में महिला का कही जा काली रूप में महिला का कही जा लेकिन वीक बाल कभी कभी हम देखनो ना अब गांव घर ऊपर देखनो अब समाज में देखनो अगल बगल देखनो कि महिला दुखी जा रहे हैं परेशान जा रहे हैं तो यह दुखी और परेशान होना के कारण होना जैसे कि आप बोले कुशल गृहिणी छा तो आप अनुभव आधार पर या जेल गाँव घर ऊपर आप देख छा तो एक महिला दुखी और परेशान होना के कारण होना।
0: सबसे पहली महिला दुखी होने का कारण तो यह छू अगर कोई खुद निकलिया मिते मदद करो तो कभी निकोल ले तुम्हें काम कर दे मैं सहयोग कर दे मिला थोड़ा अपन के काम करूँ ना वो बेचारा दबी रह जाए। अगर थोड़ी थोड़ी परिवार वालों को समझो और ये दगड़ वालों को समझो सहयोग दो तो अब काम ल करे और सब काम ल करे तो एक मन खुश है जाए दुखी नहीं होनी सीख। अगर कोई निकल जब फिर रुको लागू यार मैं इनर इच्छा पूर्ति जो करो या आप हुनर जा देखो तब मैं जा छोड़ दी हाई इनर जी कर लेनो जी करण छू यस कबेर वो कोई काम आगे नहीं बढ़ सकन। बस ईदगाह बिनती छू सब हूँ हर महिला के सहयोग दियो हर महिला के आगे बढ़ने जी हिम्मत दियो और हर शख्स जब महिला हाथों काम के थोड़ी थोड़ी ला सब लोग बांट लियो तो बोला आपको हुनर के दिखाए कोई महिला यश नहीं जो पिछल रोल आज महिला कहाँ कहाँ नहीं पूज रही सब जाग पूज रही लेकिन थोड़ा महिलाओं को ला सोचना चाहे आपो बारे में कि यार काम साथ साथ मिल जो हुनर छू अगला भैर दिखाण छू या हिम्मत दिखाण छू और आपो लीजिए समय निकालण छू आपो लीजिए समय निकाल ली जब आगे का बढ़े और परिवार वाला कला दिखा सके हो यार मिला के करनु कबीर।
1: बिल्कुल सही बात कहे कि दुखी परेशान होना तो के हल ना जरूरी के छो कि आपो लीजिए ला बखत निकालो। देखो बखत 24 घंटे तो सबों का पास होने जो ठुल ठुल जागुओं में पूछ रहे उन्हें पाले हुई बखत जी जो कुने के हमारे पास टाइम नहीं हरा और दुखी परेशान होने उन्हें पाले हुई टाइम छो तो किले ना आपो लीजिए बखत निकाली जो तो अब यह बताओ कि आखिर यह बखत निकाले का सीख जो
0: यह बखत निकालना एक समाधान छू परिवार सब सदस्य को काम बांट दियो और हर पल खुशी जो हर काम काज में खुश रोनी उसी वो सीखो क्योंकि जो महिला आगिल पूज रही उन्हें जीवन में ना परेशानी आई नल वो आगिल पूज रही तो वो परेशानी के किनार करते हुए आगिल बढ़ी और समस्या समाधान निकालते हुए आगिल बढ़ी। यह लीजिए हर महिला के खुश रहना अधिकार छू आगिल का बढ़ना अधिकार छू। हाँ जैसे कि परिवार में काम बांटन छू दीदी ने नानतीन रत्त उठनी उनको आपो मंजन खुद करण दी स्कूल में तैयार होने दी स्कूल में अभी आपो जात कहाँ धरनी वहाँ शिकायत करते धरनी खुद धरो कोई आपो बैग बैग जाग में धरो कोई आपो टिफिन निकाल भी माजे है धरो कोई और जो ऑफिस बटी होनी या नौकरी बटी होनी उन्होंने कोई जता जता जागले धरो बैग बैग जागले धरो और जो सैन छन भली गए बैठो नातना का देख दी सब आपो आपो काम इसके कर दियो जब श्रेणी हाथों थोड़ा काम कम हो जा और आपो आपो खाई भाना के जो मार सकू बुजुर्ग ना बच्चे जवान जो आपो खाई भाना के मार सकू मार दी एक का घर में नहीं धर सब आपो आपो काम कर ला जब तो थोड़ा आराम जाल वह तब आपो जो टाइम निकाल सके।
1: अगर इसी के हम अपन परिवार में जदुग ले जानी छे सब को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काम बांट दूला जब यह के हल हमार नंतिनो कौशल विकास ले हजल और जो घर गृहणी छू उकला आपो लीजिए बखत मिल जाल दे जस के हम बात करना हो कि हर महिला जीवन में खुशियों पल जो उन्हें उन पलों को खूब जिंदा दिल उगो जीण छे एक बार में आपके को
0: दे बिल्कुल सही गुण छा तुम बिल्कुल जिंदा दिले होने चाहे हर औरत के हमें घरों पर कदो जागला म्यान लगनी त्योहार होनी सब दीदी भूली बटवे जानी तो सब श्रेणिया के जान चाहे देखण चाहे सुन चाहे खुश होना हक सब कुछ हो अब समाज में जाओ तो खुश ले होनी दस चीज सीखी ले जा सहयोग ले जा कति पूछ पाठ हो कति मेला लाग रहो जान चाहे निमंत्रण आया तो भीतर लुक भी क्यों हूँ जब समाज में गोई तब तो समाज जस देखी नहीं भई और हंसीने ल होई आपो दुख बांटी नहीं ल भई और जब है जस फैशन चली होई जो हम पे छाजू आपो रीति रिवाज अनुसार उन्होंने पैरण से और समाज में जान चाहे देखण चाहे और कबत्ता घूमना मौक मिल जा नानतीन कुनी हिटो जा आज वहाँ जानो और कबत्ता दगड़ी कुनी हिटो यार आ वो मंदिर जानो या वहाँ करनो या आज वहाँ फलाण जागी अशुभल घूमनो आ वहाँ सेल लारो जानो जान चाहे देखण चाहे जब घर पर भैर निकलो तब तो हम देखून और हर समय घर घर गवे रोना जब हम तो घर में रह जोन फिर के देखून घर में के सिकून घर में जब घर पर भैर जोन देखून समाज में तब तो थोड़ी बहुत के सिकून और आपो हुनर गलो पछाड़ून बिना जाइए के पछाड़ून हम आपो को आप हुनर के निकालो श्रेणी पास इसके निकलू टाइम पछाड़ा आपो को और समाज में जाए

0: पल लागो उला खुश रहे उला सोचा मैं जिंदगी में महत्व छू और मिला जीवन से यह ना कि हमें सा भैया चौका बर्तन में जी रह गए। चौका बर्तन में क्या छो जीवन, थोड़ा भैर को जाओ जीवन देखो वल को देखो पल को देखो तब पता लगो यार मैं भी तो ज्यादा दुखी क्या छू। यह को तो बड़ी आगना हंसण है मिला हंसू यह पैरण है वो फलानी अस्करण वही अस्करण कहकर दरब दहानी ग्रहण चाहे आपुन विकास है लीजिए जदु है सक स्वेच्छा खुश रुण चाहे करण से।
1: यह तो आपुल बहुत ठुल बात कह दी कि अगर जब हम बिहार निकलनो लोगों दगे मिलनो तब हमको पते चलू कि हमार दुख तो केने जो हम हवेले ठुल ठुल दुख वाल छन जो हंसनी खेलनी घूमनी फिरनी तो हमको वेल हिम्मत मिली कि आहा देखो मैं तो अपन नन्नंजे दुख को ले क्या पहाड़ समझो न जी लोगों को बात है तो ठुल ठुल दुख छो यही नन्नन चीज हमको प्रेरणा देनी और हम अपन दुख को भूल जानो। अगर हम घर रोला जब सच्ची में जैसा बुजुर्ग को नहीं ना घर में घेरी जानी फिर हम धीरे धीरे घेरी जानो हमको बिहार निकलन चाहे और एक स्वच्छंद पंछी भाई अपन पंखों को फड़फड़ जाए। दी बिल्कुल सही बात कहना मैं।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कहे तुम महिला ले स्वतंत्र पंछी जा रहे छो चारों ओर अब पर्यावरण में घूमो और स्वतंत्र जीवन जियो खुश रहो खुशहाल जिंदगी जियो तब तो अब परिवार के लिए समाज के लिए खुशहाल जिंदगी और खुशहाल पर्यावरण दे लो।
1: दी एल आपो और मेरी बातचीत का हमारे रेडियो श्रोता सुन लग रही तो क्या आपो हमारे रेडियो श्रोता हूँ के संदेश देने चाला।
0: हाँ दीदी मैं अकोन सानू महिला का आपो घर जिम्मेदारी निभाते हुए पहले देखण से समाज में जान से और आपो लीजिए जिंदगी ले जीण से एक महिला खुशहाल जिंदगी तब जिए जब वो भीतर वाला खुशी हो और खुश हुए भैर जली जब स्वतंत्र रूपल रोज आप जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ से सब काम करो लेकिन आप लीजिए टाइम जरूर निकालना चाहिए महिला।
1: बिल्कुल सही बात कह दिया अबुल भल संदेश दे हमारे श्रोताओं को कि सब काम दगड़ दगड़ है आप लीजिए बखत जरूर निकालो। दी अपुल अपन कीमती बखत हमको दे और अपन अनुभव आधार पर भल भल बात हमको बताई याद लीजिए अब खूब खूब धन्यवाद।
2: दगड़ियों अल्लाह हमुल सुनी या क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय ची स्वयं के लिए भी जीना सीखे जमा हमार दग बातचीत करण लागरा ची श्रीमती इंदिरा जोशी तल्ला खुलटा बटी अलमाड़। अब हम बढ़नो कार्यक्रम में आगे और बात करनो पोषण पाठशाला की। दगड़ियों जमा आज हम बात करूल पीणी लेखक पानी और वेग सावधानियों के बारे में। दगड़ियों जून जुलाई महल में नमी व गर्मी कारण बैक्टीरिया बढ़ जानी बढ़ तेजिल पड़नी। यह मौसम में हमेशा उमाल भेर ठंड कदी वाल आर ओ या एक्वा गाढ़ा पानी पीण जाए इथा उथा जान में खुले पानी पीण हमको बचण जाए। दगड़ो कुछ एक नाना जस बातों खास ध्यान धन जाए जस कि उमाई पानी कम से कम 10 मिनट तक उमाई ली ठंड कर भे छाण ली ये सब हुए सुरक्षित और स्वास्थ्य लायक उपाय छो और फ्रिजक जाग में घड़क जो पानी हो वो बहुत भल मानी जाए। यह प्राकृतिक रूप पर ठंड लहूँ जब गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलूँ तब शरीर बटी लूणक मात्रा ले बाहर निकल जाए तो सद पानी जाग में दिन में एक दो बार नींबू पानी या ओ आर एस ले जरूर पीण जाए। यह तो है दगड़े ध्यान देने वाली बात। दगड़े कुछ एक सावधानी ले जरूर धरण पड़ा जिसकी पानी के ज़्यादा जमकर भी नहीं धरण हो बदलते रूचे किले की जो पानी बहुत बखत तक रह जाल तो उमले कीटाणु पनपने एक प्रकार वो कीटाणु पनपने उमें समस्या आ जाए किड़जे पनपन फट जानी उमें पीणी पानी भान साफ स्वच्छ और ढकी हो जाए। जो पीणी पानी हमार भान हो उमें ढक्कन तो जरूर धरी हो जाए। पानी का हमेशा साफ गिलास या जगल निकालन चाहे उमें हाथ नहीं डूबन जाना पड़े जब लगे बिहार जा छा तो घर बटी पीणी पानी ले जाना जान भूल जा। पानी का हमेशा भैबेर घूंट घूंट कभी आराम पिया ठठड़े घटा घट फटाफट पानी पीने लग पाचन तंत्र में गलत असर पड़ो। दगड़े हम तो यही कुल कि हमेशा पर्याप्त मात्रा में साफ स्वच्छ पानी जरूर पिया और स्वस्थ रहा और मस्त रहा। अब स्वस्थ रहला मस्त रहला मन मस्तिष्क स्वस्थ होल तबे तो जीवन का आनंद लेला। अब आगे बढ़नु और सुनू यह लोकगीत।

सुख नी देखी दुख ही पाईवे, चार दिन सुख नी देखी दुख ही पाईवे, भरी जवानी में

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम अर्पण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने को हैं कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 1:05 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत

यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्धस्तर पर जारी। पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री के कई बूथों पर डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा। आगामी मानसून को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारियां तेज की। हरिद्वार जिले के कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन। प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी और पर्यावरण बचाने का किया गया आह्वान। और पौड़ी में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में फड़ और रेहड़ी व्यवसायियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। निर्वाचन टीम लगातार इस कार्य को तेजी से पूरा करने में जुटी हुई है। जिले की विधानसभाओं में डिजिटाइजेशन के कार्य ने खासी रफ्तार पकड़ी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि अब तक लगभग 90% के साथ कई पोलिंग बूथों पर 100% काम पूरा किया जा चुका है। पुरोला विधानसभा में सबसे तेज गति से काम होते हुए कुल 45 पोलिंग बूथों पर डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है, जबकि यमुनोत्री विधानसभा में अब तक 41 पोलिंग बूथ पूरी तरह डिजिटाइज हो चुके हैं। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में भी 18 पोलिंग बूथों पर 100% शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशन का काम हो गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्य समय पर पूरा कर दिया जाएगा।
2: टोटल जो वोटर्स हैं उत्तरकाशी जनपद में वो 2,42,000, तो उसके हिसाब से सभी लोगों का ऐसा यहाँ पर डिजिटाइजेशन प्रोसेस है। इस समय डिजिटाइजेशन में जो इंडिकेटर फॉर्म है उसको हम डिजिटाइज करके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लगभग 90% डिजिटाइज हो गए हैं इसमें, और 25,000 बचे हैं जो 2 दिन में हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बूथ लेवल एजेंट हैं, उन लोगों के साथ हमारे BRO संपर्क कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग यहाँ संपर्क में रहते हैं, उनको अवगत करा रहे हैं इस ऐप के बारे में, और यह काम समय से अपना पूर्ण होगा। 8 जुलाई से नोटिसेस और नोटिस का जवाब देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 1 महीने की रहेगी।
1: आगामी मानसून के दृष्टिगत चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नदियों के तटबंधों की सुरक्षा, सड़क मार्गों की निगरानी और राहत बचाव व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जिले के सभी संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण कर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिंचाई विभाग शारदा नदी के प्रमुख तटबंधों को मजबूत करने में जुटा है, जबकि संबंधित विभागों और एजेंसियों को सड़कों से झाड़ियां हटाने, पुलियों की सफाई और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून अवधि में बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं।
3: 5 बेड की मेरे स्तर से की गई थी, उसके जिले ऐसे समस्त क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है। चिन्हीकरण करने के उपरांत वहाँ पे जो संसाधन है, आवश्यक संसाधन, उनका जो प्रबंधन है उसको भी सुनिश्चित किया गया है। सारे जितने भी कन्वर्ट सड़कें, जहाँ जहाँ पर साइनेजर झाड़ियाँ ये सब है, इनको साफ करना, कन्वर्टों को खोलना, झाड़ियों का कटान करना।

0: इन सभी चीजों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जो घाट है, संवेदनशील है, आसपास के गांव हैं, उनको भी जो है समय से सूचना प्रचारित प्रसारित करना, ये सारी चीजें जो है वो की जा रही है।
1: देहरादून जिले की पांवटा साहिब सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने कल पांवटा साहिब सीमा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीमा पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और देहरादून आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जाँच की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की ओर से गुरुद्वारा पांवटा साहिब में

0: जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने कल पांवटा साहिब सीमा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीमा पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और देहरादून आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की ओर से गुरुद्वारा पांवटा साहिब में निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी जारी है ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे।
1: शिष्टमंडल जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा है निहंग साहिबानों के साथ में, और मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है, और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पे जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, और ऑनरेबल CM सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसीजन।
0: वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा क्षेत्र सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
2: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार जिले में कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में शुक्रवार को खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित किसान गोष्ठी में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने किसानों से पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खेती में अपनाने की सलाह दी। गोष्ठी में किसानों को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करने, रासायनिक खाद के साथ जैविक खाद के उपयोग और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए जैविक खाद तैयार करने की विधियों की जानकारी दी गई। पौड़ी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान फड़ और रेहड़ी व्यवसायियों को अधिकाधिक क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने, उनकी प्रोफाइलिंग करने तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। लीड बैंक अधिकारी किशन सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे फड़ और रेहड़ी व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। सिटी मिशन मैनेजर जगदीश रतोड़ी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि पुनर्गठित योजना और स्वनिधि से समृद्ध योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 1 से 30 जून तक सभी निकायों में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित बैंक अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को सरल प्रक्रिया के तहत ऋण उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर योजना के अंतर्गत सर्वाधिक ऋण वितरित करने वाले बैंकों तथा योजना का सफलतापूर्वक लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाले फल व्यवसायों को सम्मानित भी किया गया। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती 2026-27 के तहत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह से अल्मोड़ा जिले में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत के सोमनाथ मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के ARO कर्नल महेश कुमार ने बताया कि अग्निवीर भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। परिणाम जारी होने के तुरंत बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए सेना ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अभ्यर्थियों के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की केंद्रीय श्रेणी के अभ्यर्थी भी रानीखेत के सोमनाथ मैदान में होने वाली शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे। पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाएगा।
3: ARO की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर एंड उधम सिंह नगर के उन सभी कैंडिडेट्स को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं जिन्होंने अभी 12 जून को कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम अग्निवीर का कंप्लीट किया है कि हमने इन बच्चों के लिए मिड जुलाई के बाद रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में उनकी फिजिकल की रैली की तैयारियां पूरी कर ली है। सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एग्जाम के बाद

0: अपने फिजिकल्स को कंटिन्यू रखें, जिससे कि मिड जुलाई के बाद जो हमने प्लान किया है फिजिकल रैली का, उसमें बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी। पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री के कई बूथों पर डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा। आगामी मानसून को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारियां तेज की। हरिद्वार जिले के कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन। प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी और पर्यावरण बचाने का किया गया आह्वान। और पौड़ी में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में फड़ और रेहड़ी व्यवसायियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं अरुण भैरव के नगमे से, आवाज़ नितिन मुकेश की।

श्रोतो, ये थे नितिन मुकेश और अब समापन कर रहे हैं अनुराधा पोटवाल और नितिन मुकेश के युगल स्वरों में इस गीत के साथ।

0: अनुराधा पोडवाल और नितिन मुकेश के गाए से गीत के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है नाटक
1: जंगली बूटी। आज प्रस्तुत है अमृता प्रीतम की मूल कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं ताबीर मिर्जा। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 2010 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो लीजिए सुनिए नाटक जंगली बूटी।

0: लाओ हैंडपंप मैं चला देती हूँ, तुम धो लो सब्जी।
1: हाँ,
0: तुम्हारा नाम क्या है?
1: अंगूरी।
0: अंगूरी, अच्छा नाम है। तुम अंगूर क्या ज्यादा खाती हो?
1: दो बार खाए हैं अंगूर, एक बार गौने से पहले और एक बार गौने के बाद। प्रभाती लाया था।
0: प्रभाती कौन है?
1: वो मेरा आदमी।
0: तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो।
1: मेरे को गाना नहीं आता।
0: इतना तो मीठा गा रही थी।
1: अरे नहीं, वो तो बस मैं गुनगुना रही थी।
0: मेरा नाम वीना है, गर्मियों की छुट्टियों में आई हूँ यहाँ।
1: छुट्टी बोले तो काम करती हो तुम?
0: पढ़ती हूँ, 10+2 समझती हो? 12वीं समझती हो? अरे 12वीं का इम्तिहान दिया है, अब मैं कॉलेज जाऊंगी। तुम अपना वो गाना सिखा दो अगर, तो मैं अपने कॉलेज के फंक्शन में सुनाऊंगी।
1: ये लकड़ियां भी गीली हैं, फूंक मारनी पड़ेगी। हाँ, अब आ गई थोड़ी आग। वो मेरे को गाना नहीं आता। हाँ,
2: नीना, नीना।
1: चाची बुला रही है तुम्हारी।

0: मानो वो चाची है मेरी।
1: वो राम तारा, राम तारा बोला था।
0: राम तारा कौन है?
1: आप लोगों का चौकीदार है वो।
0: आ गई चाची।
2: रीना, शरबत बनाया था, गर्म हो रहा है। अरे इतनी सी तो बर्फ थी, कहाँ चली गई थी?
0: वहाँ उस मकान के पीछे एक लड़की थी, इतना मीठा गा रही थी कि मैं रुक के सुनने लगी। कितनी क्यूट है वो।
2: अच्छा, वो हाँ, वो अंगूरी है।
0: कितना मीठा गाती है, कौन है वो?
2: वो हमारे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के बहुत पुराने नौकर प्रभाती की बिल्कुल नई नई बीवी है।
0: नई नई का मतलब?
2: प्रभाती दोहाजू है, अंगूरी उसकी नई बीवी है।
0: दोहाजू?
2: जू का मतलब है जून, दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे ब्याह की जून में। और अंगूरी अभी ब्याह की पहली जून में है, इसीलिए वो नई है।
0: आपने तो नई नई कहा था।
2: हाँ, नई नई है क्योंकि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं ना, वो सारे जोड़ कर भी एक साल नहीं बनेंगे।
0: ऐसा कैसे हो सकता है चाची? क्योंकि जब मैं सातवीं में थी और मैं छुट्टियों में आई थी ना, तो प्रभाती के ब्याह की पिंडी, तो क्या ये उसकी तीसरी बीवी है?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, अंगूरी दूसरी बीवी है उसकी। 5 साल पहले जब प्रभाती यहाँ से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने गांव गया था ना, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन वहाँ इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था।
0: मतलब है प्रभाती का अंगोछा भीगा हुआ था।
2: देख, समझा जाता है कि आंसुओं से भीगा होता है वो अंगोछा। पर वैसे होता ये है कि क्रिया के दिन नहाकर बदन पोछने के बाद पानी से ही भीगा होता है वो अंगोछा। लेकिन अगर गांव की किसी लड़की का बाप क्रिया के बाद उठकर वो अंगोछा निचोड़ दे, तो दरअसल वो ये कहता है कि बस अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरने वाली की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। तो इस तरह अंगूरी का ब्याह प्रभाती से हो गया था।
0: लेकिन ये तो ऑलमोस्ट चाइल्ड मैरिज हुई चाची,
2: इसीलिए तो गौना नहीं हुआ था ना।
0: अच्छा,
2: क्योंकि अंगूरी बहुत छोटी थी। अब फिर पिछले दिनों यानी ब्याह के 5 साल बाद जब प्रभाती गाँव गया था, तो मालिकों को कहकर गया था कि इस बार वो अंगूरी को लेकर ही आएगा। लेकिन मालिक लोग राजी नहीं थे।
0: क्यों?
2: अरे भाई, अपनी रसोई से वो दो जनों की रोटी नहीं देना चाहते थे।
0: अच्छा।
2: लेकिन प्रभाती ने दलील दी कि अंगूरी कोठरी के पीछे वाली जगह पोतकर अपना अलग चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तब जाकर वो राजी हुए।
0: अच्छा, उसे आज देखकर मुझे इतना अजीब लगा। वो दोनों हाथों से काम किए जा रही थी और दांतों से घूंघट दबाए हुए थी। आमतौर से औरतें मर्दों के सामने घूंघट निकालती हैं, लेकिन वो तो मेरे सामने भी।
2: जब आई थी तब तो घूंघट और घना था।
0: अच्छा,
2: अब तो धीरे धीरे थोड़ा झीना हो गया है। वैसे उसकी दबी दबी हंसी में बहुत खनक है। वो पैरों में वो चांदी की झांझरी पहनकर छन छन करती मोहल्ले की रौनक बन गई है। जब भी इधर आता है तो एक झांझर उसके पाँव में होती है, एक उसकी हंसी।

0: क्या हो रहा है उंगुरी?
1: शहर की दाल में कंकड़ पत्थर मिले होते हैं वही बीन रही हूँ।
0: और गा कह रही थी

0: मुझे गाना नहीं आता।
1: तुम कभी नहीं बताती। अरे ये क्या पहना है अंगूरी?
0: ये हा? ये मेरे पैरों की छैल चूड़ी है।
1: अरे और ये दिखा उंगलियों में?
0: ये बिछुआ है, पिछुआ।
1: और ये बाहों में?
0: बाहों में ये पछेला है, पछेला।
1: इतने सारे गहने, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये गले में क्या है?
0: हसली, हसली है ये बीबी जी।
1: और अब ये माथे पर क्या है?
0: आलीबंद कहते हैं।
1: आलीबंद? अच्छा, वो भी तो होता है ना, वो आशने कमर में नहीं पहना वो
0: तगड़ी।
1: हाँ हाँ, तगड़ी
0: बहुत भारी लगती है। कल पहनूंगी।
1: अच्छा,
0: कल? आज तो मैंने टॉप भी नहीं पहना, उसका टांका टूट गया है।
1: अच्छा,
0: कल शहर जाऊंगी, टांका भी गढ़ाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरी नाक का नक्शा भी था, इतना बड़ा
1: नक्शा।
0: मेरी सास ने दिया नहीं, रख लिया।
1: टू बैड।
0: आती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ।
2: वीना।
1: हाय चाची। चाची, कितना ठंडा है यहाँ। इतने बड़े बड़े नीम के पेड़ दिल्ली में कभी नहीं देखे मैंने। नीम के पेड़ ठंडे होते हैं क्या?
2: अरे बेटा, नीम से ज्यादा ठंडी तो बरगद की छांव होती है। वैसे ये जो जगह है ना, इस पुराने कुएं की वजह से ठंडी रहती है।
1: लेकिन इससे तो कोई पानी नहीं निकालता ना शायद?
2: अरे वो मोहल्ले के लोग तो इससे पानी भरते ही नहीं। लेकिन वो जो उधर वो जो सड़क बन रही है ना,
1: उस पर?
2: हाँ हाँ, उसके मजदूर कभी कभी चला लेते हैं इसे। देख, कुएं के गिर पानी गिरने की वजह से कितनी ठंडी है जगह, है ना।
1: अच्छा, ये क्या पढ़ रहे हो आप?
2: मैं शरद बाबू की किताब। जरा ये तो बता कि क्या बातें हो रही थी अंगूरी से?
1: ज्वेलरी दिखा रही थी अपनी, वो आली बंद और तगड़ी नहीं पहन के आई।
2: वो जो है ना, अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती है और एक नखरे से दिखा।

0: इतनी गर्मी में शरबत पी लिया कर।
1: ठीक है चाची, पी लिया करूंगी। कैलोरीज कितनी होती है पता है आपको?
0: बस कर, हाँ, हर वक्त कैलोरीज।
1: कॉलेज जाना है मुझे।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, बना।
2: सलाम बीबी जी।
0: हाँ सलाम सलाम।
2: बीबी जी, गांव से खबर आई है, माँ बीमार है।
0: ओहो।
2: कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा, सोचा आपको बता दूं।
0: अच्छा अच्छा, वो कब कब तक आप आओगे?
2: ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तबीयत ज्यादा खराब हुई तो, वैसे मैं अपने साथी को बोल के जाऊंगा, वो देखता रहेगा। अच्छा बीबी जी, अब चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
2: दूसरे घरों को भी बोलता जाऊंगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: अच्छा बीबी जी, सलाम
0: सलाम सलाम।
1: कितनी मुस्कुराती आंखें थी इसकी।
0: थोड़ा हंसती, थोड़ा शर्माती आंखें, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है।
1: अच्छा।
0: लेकिन इसकी जबान में एक खास सलीका है। देखो गांव जा रहा है लेकिन अपनी जगह दूसरे को बोलकर।
1: लेकिन अंगूरी को साथ नहीं लेके जाएगा क्या? वो तो कहती है कि वो शहर जाएगी कल। अरे वो नाक की कील लेने।
0: क्या क्या? वो क्यों जाएगी राम तारा के साथ?
1: राम तारा? तो ये प्रभाती नहीं था क्या?
0: नहीं नहीं, ये तो राम तारा है, वो अपना चौकीदार।
1: ओ अच्छा, वो क्या है ना, मैं इसे रोज सुबह वहाँ अंगूरी के चूल्हे के पास बैठे देखती थी, अब मुझे लगा यही प्रभाती है।
0: जब तक अंगूरी यहाँ नहीं आई थी तो राम तारा सारी रात की पहरेदारी के बाद सवेरे सवेरे किसी न किसी के घर से चाय का गिलास मांगा करता था।
1: हाँ।
0: और चाय पीकर इसी कुएं के पास खाट डालकर दिन भर सोता रहता था। पर अब जब से अंगूरी आई है वो सवेरे सवेरे किसी ग्वाले से दूध ले आता है और अंगूरी के चूल्हे पर चाय बनाता है और फिर तीनों वहीं बैठकर पीते हैं।
1: तीनों? अच्छा हाँ, हाँ। एक और भी तो होता है वहाँ। तो क्या वो ठिगने कद वाला, ढलके मुंह वाला, वो कसौरे जैसा आदमी उसका पति है? टू बैड, अंगूरी जैसी लड़की का हस्बैंड राम तारे जैसा तो कोई होना ही चाहिए था। कितनी कशिश है उसमें और वो कितनी यंग है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। और तुझे पता है गांव के लोग कहते हैं कि औरत आटे की लोई होती है, लोई, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस खमीरी आटे जैसा होता है जिसे बेलने से फैलाया ही नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना गुंथा होता है कि रोटी तो क्या, चाहो तो पूरियां बेल लो। मैं जब जब अंगूरी की बाहें, उसकी पिंडलियां, उसकी देह देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो इतने सख्त मैदे से गुंथी हुई है कि जिससे जिससे
1: जिससे मटिया तली जा सकती है।
0: प्रभाती। जब मैं अंगूरी के साथ प्रभाती को देखती हूँ ना, तो मुझे अजीब सी तुलना सूझती है। तुम सुनोगी तो हंसोगी।
1: ओ बताइए ना।
0: मुझे लगता है कि उसका पति आटे की इस घनी गुथी लोई को पकाकर खाने का हकदार ही नहीं है। वो इस लोई को ढककर रखने वाला कठवत है, कठवत, समझी?
1: चलिए अंदर चलिए, अंधेरा हो रहा है।

0: आओ गुरी।
1: क्या पढ़ती हो बीबी जी?
0: तुम पढ़ोगी?
1: मेरे को पढ़ना नहीं आता।
0: तो सीख लो।
1: ना ना।
0: क्यों?
1: औरतों को पाप लगता है पढ़ने से।
0: औरतों को पाप लगता है और मर्द को नहीं लगता?
1: ना, मर्द को ना लगता।
0: ये तुमसे किसने कहा?
1: मैं जानती हूँ बीबी जी।
0: अच्छा अच्छा, तो मैं जो पढ़ती हूँ मुझे पाप लगेगा? हा?
1: ना, शहर की औरत को पाप ना लगता।
0: अच्छा।
1: गांव की औरत को पाप लगता है।
0: वीना, वीना, देख तू क्या कह रही है।
1: ये देखो, ये खुद भी हंसती है ये कहकर कि गांव की औरत को पाप लगता है पढ़ने से।
0: लेकिन ये भी तो देखो कि इसने जो कुछ भी सीखा सुना है इसमें उसे कोई डाउट नहीं है।
2: But you must tell her that these beliefs are misleading and false.
0: ये उन बातों के साथ अगर हस्ती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में खुश रह सकती है तो उसके लिए यही ठीक है।
2: अच्छा। हाँ अंगूरी, अंगूरी ये बताओ तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है?
1: लड़की छोटी सी होती है, 10-11 साल की, तभी वो किसी की पांव पूछ लेती है।
2: पांव पूछ लेती है? कैसे पूछती है पांव?
1: वो लड़की का बाप जाता है फूलों की एक थाली और रुपए लेकर लड़के के आगे रख देता है।
0: भाई ये तो बाप ने पांव पूजे, लड़की ने कहां पूजे?
1: लड़के की तरफ से तो पूजे,
2: पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं ना।
1: लड़कियां नहीं देखती?
2: लड़कियां होने वाले हस्बैंड को नहीं देखती?
1: ना ना, जो लड़कियां प्रेम करती हैं वो देखती हैं।
2: ग्रेट, तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं।
1: कोई कोई
0: भाई, जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता?
1: लगता है, पाप लगता है बीबी जी, बड़ा पाप लगता है।
0: अगर पाप लगता है तो फिर वो प्रेम क्यों करती हैं?
1: ये तो बात ये होती है बीबी जी कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वो उससे प्रेम करने लग जाती है।
2: इंटरेस्टिंग।
0: कोई क्या खिला देता है उसको?
1: एक जंगली बूटी होती है।
0: अच्छा?
1: बस वही पान में डालकर या मिठाई में खिला देता है। छोकरी उससे प्यार करने लग जाती है।

0: उसे उसे वही अच्छा लगता है। दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
1: सच
0: सच बिल्कुल सच। मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा है।
2: किसे देखा था?
0: मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से।
1: फिर
0: क्या, वो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई थी उसके साथ।
2: अच्छा ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी?
0: बर्फी भी डालकर खिलाई थी, बर्फी भी डालकर।
2: अच्छा
0: हाँ, और नहीं तो क्या, वो ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। पता है वो उसको उसको बहुत सी चीजें लाकर देता था शहर से। धोती लाता था, चूड़ियां भी लाता था सीसे की, और मोतियों की माला भी।
1: अंगूरी ये तो चीजें हुई ना, ये तुझे कैसे मालूम हुआ कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी?
0: हाँ? नहीं खिलाई थी तो वो उससे प्रेम क्यों करने लग गई थी?
2: भाई प्रेम तो यूं भी हो जाता है।
0: हाँ? ना ना ऐसे ही नहीं होता, जिससे माँ बाप पूरा मान जाए, भला ऐसा प्रेम भी कभी हो सकता है?
1: अंगूरी तूने वो जंगली बूटी देखी है?
0: मैंने ना देखी, वो तो बड़ी बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपाकर मिठाई में डाल देते हैं।
2: अच्छा अच्छा।
0: या पान में खिला देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना।
2: हाँ तूने अच्छा किया कि मिठाई नहीं खाई। अच्छा फिर तेरी उस दोस्त ने कैसे खा ली? हाँ
0: अपना किया पाएगी, अपना किया। बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी ना लगाती थी, रातों को उठ उठकर गाने लगती थी।
1: क्या गाती थी?
0: पता नहीं क्या क्या गाती थी। जो कोई बूटी खा लेती है बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। मैं तो भूल ही गई। मैं लकड़ी चुनने जा रही हूँ।
2: अरे, अरे अरे अरे शाम होने वाली, अंगूरी कहाँ जाएगी जंगल वीराने में? जा जा वहाँ बाड़े से उठा रहे लकड़ियाँ, उठा ले।
1: बहुत रोती है, गाती भी बहुत है
2: बेचारी, रात को उठ उठ कर गाती।

0: वीना, वीना।
1: जी चाची।
0: बेटा ये अखबार ले जा और मेरी किताब दे जा।
2: पीपी जी।
0: अंगूरी, अरे आज तुम्हारी झांझरों की आवाज नहीं आई।
2: मुझे मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो।
0: क्या हुआ अंगूरी, किसी को खत लिखोगी? पाप नहीं लगेगा पढ़ने से?
1: फोन आया चाचा का।
0: हाँ आती हूँ। कहते आती हूँ। कितनी ठंडी हवा चल रही है, मुझे लगता है आज बारिश जरूर होगी। अंगूरी अंगूरी तुम यहीं बैठना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा
3: हाँ आ रही हूँ।

0: चाची, चाची इधर आइए।
1: वो क्या है?
0: वहाँ देखिए, बारिश में भी वो ऐसे बैठी रही उस कुएं के जगत पर।
1: ओह, अरे अरे, वो दोपहर में जब फोन आया था
0: जी,
1: तब उसे वहाँ छोड़कर आई थी मैं। इसका मतलब है वो तब से अब तक, शाम हो रही है अब, क्या हुआ है उसे? मैं पूछती हूँ। तुम नहीं आओगी।
0: लेकिन क्यों?
1: बस कह दिया, तुम नहीं आओगी, चलो जाओ, अंदर जाओ।

0: वीना सही कहती है, तू तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी।
1: मुझे नहीं आता गाना।
0: आता तो है।
1: ये तो
0: तेरी वो सखी गाती थी। हाँ,
1: उसी से सुना था।
0: तो मुझे भी सुनाओ।
1: ऐसे ही गिनती है बरस भर की, कि 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने
0: ना, ना, ना, ना, ना, ऐसे नहीं। गा के सुना।

चार महीने राजा बरखा हो बरखा।

0: कितना सुंदर गाना गाया तूने। हाँ अंगूरी, अरे कुछ खाया तूने? मेरा मतलब है खाना भी खाया या नहीं?
1: खाना?
0: अरे अरे तेरे जिस्म क्यों कांप रहा है रे? इधर आ, इधर आ। अच्छा अच्छा अच्छा बस। और सुन, ये जो कंपन है तेरी देह का, उसमें सर्दी के कांपते कलेजे का, गर्मी की कांपती हवा का और बरखा के बादलों का कंपन, और तेरे गीत का सारा कंपन समाया हुआ है। अच्छा ले ले, बैठ बैठ जाए। और अब बता, तूने आज रोटी बनाई या नहीं?
1: नहीं।
0: अरे सवेरे बनाई थी, चाय पी थी तूने?
1: चाय तो जो नहीं था।
0: क्यों, आज दूध क्यों नहीं लिया तूने?
1: वो तो मैं लेती नहीं, वो तो।
0: हाँ तू रोज चाय नहीं पीती?
1: पीती हूँ।
0: तो फिर आज क्या हुआ?
1: वो दूध तो वो राम राम तारा।
0: पर राम तारा तो चार पांच दिन से गांव गया हुआ है। और अंगूरी, अरे तूने तब से चाय नहीं पी?
1: ना।
0: और रोटी ना। भी नहीं खाई? अगर खाई भी होगी तो ना खाने जैसी ही। क्यों
1: अंगूरी जी?
0: अरे अरे कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने?
1: मुझे मुझे कसम लगे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई हो, पान भी नहीं खाया कभी मैंने।

0: जंगली बूटी। अभी आप अमृता प्रीतम की मूल कहानी का ताबीर मिर्जा द्वारा किया गया ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रही थे। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 2010 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थी विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सलीमा रजा, किशोर सहजानी, रूमी मलिक और कविता वर्मा।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। लेकर हम आए हैं उत्तराखंड के लोकगीत। पहले सुनिए गंभीर दार्मिज के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के

उत्तराखंड के लोग गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। समाचार अब दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
2: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
3: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है आधुनिक कृषि में माइक्रोबायोलॉजी का योगदान। जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार।
1: किसान भाइयों, दुनिया की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सन 2050 तक खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य दुगना करना पड़ेगा तथा साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करनी होगी। अतः इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के बीच उपस्थित अनेक लाभकारी संबंधों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। आधुनिक कृषि में माइक्रोबायोलॉजी का योगदान बहुत अधिक है। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है जो एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी कोशिका समूह जंतु होते हैं जो कि नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। सूक्ष्म जैविकी अति विशाल शब्द है जिसमें विषाणु विज्ञान, कवक विज्ञान, परजीवी विज्ञान, जीवाणु विज्ञान व अन्य कई शाखाएँ आती हैं। सूक्ष्म जैविकी में लगातार शोध होते रहते हैं और यह क्षेत्र अनवरत प्रगति की ओर अग्रसर है। अभी तक हमने शायद पूरी पृथ्वी के सूक्ष्म जीव में से 1% का ही अध्ययन किया है। जीवाणुओं व सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने 1676 में स्वनिर्मित एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी से देखा था। हालांकि लेवेनहुक ने प्रथम सूक्ष्म जैविक विज्ञान कहा जाता है, किंतु प्रथम मान्यता प्राप्त सूक्ष्म जैविक विज्ञान जो है वो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें जीवाणु प्रमुख हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। ये कोशिकाएं भित्तियुक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, भूपपटी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पेड़ एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। ये कई रासायनिक तत्वों के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि उत्पादकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहुतायक प्रयोग आजकल प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब लोग समझने लगे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग करने से कई समस्याएँ जुड़ी हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप माइक्रोबायोलॉजी कृषि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसमें जैविक खेती करने पर और जैव उर्वरकों के प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। हाल ही में भारत में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध होने लगी है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं जिससे मृदा पोषक तत्वों की भरपाई तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कम हो रहा है, जिस कारण पर्यावरण का प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इनका मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। द्विदाली या लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम नाम के सहजीवी संबंध के बनाने के द्वारा होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया नाइट्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है जो बैक्टीरिया के विभिन्न समूहों में पाया जाता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके इसे कार्बनिक रूप में परिवर्तित करता है और उसे पौधों को प्रयोग हेतु उपलब्ध कराता है। पादप विकास में सहायक राइजोबैक्टीरियम पौधे शाखा तथा जड़ों के विकास को बढ़ावा देते हैं जिन्हें कि आमतौर पर हम PGPR प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरियम से संदर्भित करते हैं। कृषि एवं बागवानी में पौधों के विकास एवं रोग नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइजोबैक्टीरिया अनेक प्रकार से पौधों के जड़ों तथा प्रोरो विकास में वृद्धि करते हैं जैसे हारमोन्स तथा द्वितीयक उपापचय बनाकर रोगों का नियंत्रण, दैविक प्रतिरोध को जागृत करके पौधों के भीतर रासायनिक व भौतिक व्यवहार में बदलाव, आजीविकी कारकों जैसे सुरक्षा, सूखा, अधिक लवणता की दशा में भी जीवित रहने वाले ऐसे बैक्टीरियल टीकों की खोज की जा रही है जिनका जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जा सके। वास्तव में जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों तथा किसी नमी धारक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। विशेष सूक्ष्म जीवों को निर्धारित मात्रा को किसी नम धारक धूलीय पदार्थ जैसे चारकोल व लिग्नाइट आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं। प्रायः कल्चर के नाम से ये बाजार में उपलब्ध हैं। वास्तव में जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है। इनका उपयोग विभिन्न फसलों में नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की आंशिक पूर्ति हेतु किया जा सकता है। इनके उपयोग का भूमि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि ये भूमि के भौतिक

जैविक गुणों में सुधार करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैविक खेती में जैव उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैविक खाद का प्रभाव धीरे धीरे होता है। हमारे खेत की 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 2 से 3 अरब जीवाणु पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः बैक्टीरिया, फफूंद, कवक, प्रोटोजुआ आदि होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने व फसल उत्पादन की वृद्धि में अनेक कार्य करते हैं। जैव उर्वरकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुसार विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार के जैविक उर्वरक लाभकारी पाए गए हैं। दलहनी फसलों में अलग अलग जाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि फसल विशेष के अनुसार ही राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाए। इन जैव उर्वरकों का प्रयोग विभिन्न दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, मसूर, मटर, चना, खेसरी दाल, मूंगफली, सोयाबीन आदि में किया जा सकता है। वैसे तो विभिन्न दलहनों की जड़ों पर गांठों का निर्माण करने वाला राइजोबियम जीवाणु भूमि में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, परंतु कभी कभी मिट्टी में इनकी संख्या पर्याप्त न होने के कारण और मिट्टी में विद्यमान राइजोबियम जीवाणु की सक्रियता के कम होने के कारण इन जैविक उर्वरकों का दलहनों में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, जिससे फसलों में पर्याप्त मात्रा पर जड़ ग्रंथियों का निर्माण हो सके। अनेक प्रयोगों से पता चला है कि विभिन्न दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर के उपयोग से उपज में 10 से 15% की वृद्धि हो सकती है। इसके प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है। यही नहीं, दलहनी में फसलों में राइजोबियम जैव उर्वरक उपयोग का लाभ आगामी फसलों में भी लिया जा सकता है। अन्य जीवाणु जैसे एसजीओ स्पिरुलियम तथा एजोटोबैक्टर मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं, यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन तत्व बढ़ जाते हैं, जिसका उपयोग पौधे सुगमता से कर पाते हैं। यह जैव उर्वरक सभी अनाज, गेहूँ, जौ, ज्वई, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सब्जियों की फसलें जैसे टमाटर, गोभी, बैंगन, आलू आदि में तथा फूलों तथा अन्य फसलों जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, पटसन आदि में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों में 20 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन उर्वरक के बराबर लाभ प्राप्त होता है। एसिटोबैक्टर जैव उर्वरक गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त पाया गया है, जो गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन तथा वाले अन्य जो उर्वरकों की लगभग 25 से 30% की बचत करने में सहायक होता है। इसके प्रयोग से गन्ने की फसल में नकद प्राप्त होने वाली चीनी में जो परतें हैं उससे 1 से 2% की वृद्धि देखी जा सकती है। एजोटोबैक्टर की तरह एजोस्पिरिलियम जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तथा वायुमंडल नाइट्रोजन को ग्रहण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसका प्रयोग भी विभिन्न धान्य फसलों में किया जा सकता है, परंतु अधिक नमी में उगाई जाने वाली फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा आदि, इन फसलों में इस जैव उर्वरकों का लाभ अधिक देखा गया है। इस जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों को प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन उर्वरक के बराबर लाभ मिलता है। हरी नीली सवाल भी प्राकृतिक तथा महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है। इसका उपयोग केवल सिंचित धान फसल में ही किया जा सकता है, क्योंकि इन सवालों की वृद्धि तथा उत्पादन हेतु खेत में पर्याप्त जल भरा रहना आवश्यक है। यह जैव उर्वरक भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर कर फसल को उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा एकत्र की गई नाइट्रोजन सवालों के सड़ने के पश्चात ही फसलों को प्राप्त हो सकती है, जिसकी संपूर्ण मात्रा का उपयोग इस जैव उर्वरकों का प्रयोग की जाने वाली फसल पर नहीं किया जा सकता, परंतु सेज बसी हुई नाइट्रोजन अधिक फसल को आगामी समय में लाभ पहुंचाती है। एजोला इसी प्रकार एक जलीय फर्न है, जिसकी वृद्धि के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसका प्रयोग भी धान की फसल में किया जा सकता है। पशुओं के लिए पौष्टिक आहार के रूप में भी एजोला का उपयोग किया जा सकता है। इसे खिलाने से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है तथा पशुपालन में दाना खली के व्यय को कम किया जा सकता है। धान में एजोला का प्रयोग हरी खाद के रूप में रोपाई के पहले भी किया जा सकता है। यह देखा गया है कि 5 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से हरी खाद के रूप में प्रयोग करने पर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के समतुल्य जो है हमें लाभ प्राप्त होता है। भारत की 80 से 90% भूमि में फॉस्फोरस तत्व की कमी पाई जाती है। पौधे विकास तथा दानों को पुष्ट बनाने में फॉस्फोरस की महत्वपूर्ण योगदान होता है। पौधे में फॉस्फोरस तत्व की पूर्ति हेतु प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा का 18 से 23% भाग ही फसल को उपलब्ध हो पाता है। शेष भाग अघुलनशील अवस्था में भूमि के अंदर बेकार पड़ा रहता है, जबकि फॉस्फेटिक उर्वरकों पर कृषकों को सबसे ज़्यादा लागत आती है। कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस, स्यूडोमोनास इत्यादि तथा कवक जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम इत्यादि भूमि की अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर इसे पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। फॉस्फोरस घोलक जीवाणु या PSV कल्चर के प्रयोग से भूमि में अघुलनशील अवस्था में उपस्थित फॉस्फोरस घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। फॉस्फोरस घोलक जैव उर्वरक का प्रयोग भी धान्य, दलहनी तथा तिलहनी फसलों के लिए

0: भूमि में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इन दलहनी फसलों को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस उर्वरक के बराबर लाभ होता है। इनका उपयोग नाइट्रोजन प्रदान करने वाली जैव उर्वरक जैसे राइजोबैक्टीरियम एजोटोबैक्टर एजियोस्पोरियम के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। जैव उर्वरक प्रयोग हेतु राइजोबियम एजोटोबैक्टर एस्पोरियम और फास्फोरस विलयकारी जैव उर्वरक के प्रयोग के लिए बीज उपचार विधि ही सुविधाजनक तथा प्रचलन में है। सामान्यतः किसी भी फसल के 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए एक पैकेट या 200 ग्राम जैव उर्वरक पर्याप्त होता है। जैव उर्वरक की इस मात्रा को 100 से 150 मिलीलीटर मात्रा को चारकोल या लिग्नाइट में मिला लें। तत्पश्चात जैव उर्वरक के इस घोल को बीजों के ऊपर डालकर उसे बीजों के साथ इस प्रकार मिला दें कि प्रत्येक बीज के ऊपर एक जैव उर्वरक की पतली परत बन जाए। जैव उर्वरक से उपचार करने के बाद काले दाने के रूप में हमें बीज दिखाई देगा। जैव उर्वरक से उपचारित बीज को थोड़ी देर छाया में सुखाकर तुरंत उसे बो देना चाहिए। दूसरी विधि में भूमि उपचार होता है, जिसमें एजिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर एवं पीएसबी जैव उर्वरक का प्रयोग सभी खाद्यान्नों की फसलें जैसे गन्ना तिलहन फसलों सब्जी फसलों फूलों आदि में किया जा सकता है। इस विधि में जैव उर्वरक की लगभग 2 से 5 किलोग्राम की मात्रा को 100 किलोग्राम अच्छे प्रकार सड़ी गली गोबर की खाद या कंपोस्ट में मिलाकर खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई से पूर्व खेत में एक साथ छिड़ककर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कंद उपचार विधि में आलू की फसल में एजोटोबैक्टर या पीएसएम का उपयोग करने के लिए प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम जैव उर्वरक को 20 से 25 लीटर पानी में घोलकर उसे बीज को 5 मिनट तक डुबोकर बुवाई करें। गन्ने की फसल में एसिटोबैक्टर जैव उर्वरक के 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार जड़ उपचार विधि में रुपाई वाली फसलों में प्रयोग की जाती है। इस विधि में 1 से 2 किलोग्राम जैव उर्वरक को 10 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए रुपाई हेतु पौधों को रुपाई से पूर्व 10 मिनट के लिए जड़ों को उनमें डुबोकर रुपाई की जाती है। इन उर्वरकों के प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी आवश्यक है। यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक का विकल्प नहीं है। मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकता निर्धारण करने के पश्चात ही इनका उपयोग करना चाहिए। जैव उर्वरकों का रासायनिक तथा कार्बनिक खातों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर उसका प्रयोग करना चाहिए। फसल के लिए निर्धारित जैव उर्वरक ही प्रयोग करें। यह जैव उर्वरक जीवाणुओं का एक मिश्रण होता है, इसलिए इन्हें तेज धूप उच्च तापमान से सदैव बचाकर रखें, अन्यथा यह जीवाणु बनने शुरू हो जाएंगे और हमारा जैव उर्वरक खराब हो जाएगा। इसी प्रकार पादप कवकों के साथ भी सहजीविक संबंध माइक्रोएल्गा भी स्थापित करते हैं। ग्लोमरस जीनस के बहुत से सदस्य माइक्रोएल्गा बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पौधे को भेज देते हैं। ऐसे संबंध से युक्त पौधों से कई लाभ जैसे मूलावतोड़ रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा अधिक विकास करते हैं। माइक्रोएल्गा कवक पौधों के साथ साझेदारी कर पौधों को फास्फोरस तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता लोहा आदि की अवशोषण को बढ़ाते हैं। वेसिकुलर अवेसिकुलर माइक्रोएल्गा या वैम फंजाई जो है वो विभिन्न धान्य फसलों जैसे दलहनी फसलों के साथ साझेदारी कर फसलों को लाभ पहुंचाती है।
1: आधुनिक कृषि में माइक्रोबायोलॉजी का योगदान, इस विषय पर संजय कुमार खेती की बातें कार्यक्रम में दे रहे थे जानकारी। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलसर में कलाकार होंगे हेमंत सिंह लोधियाल। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा बॉडी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस। खेल जगत आप सुनेंगे। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में हेलन केलर जयंती पर अल्मोड़ा में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यमिता दिवस, महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि और दैनिक जीवन में योग अपनाएं, स्वास्थ्य लाभ पाएं।

विषय पर भी चर्चा श्रोता सुनेंगे। साथ ही चर्चा का विषय एक और रहेगा, हेलन केलर जयंती। शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बातें होंगी, कृषि में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग विषय पर, खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा परीक्षण इस विषय पर क्षेत्र संकलित बातचीत आप सुनेंगे। आज की सलाह लीजिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विषय पर, सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर समेकित कृषि एवं सब्जी उत्पादन विषय पर रमा तिवारी से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। आज के फनकार हैं मशहूर पार्श्व गायक पपॉन। श्रोताओं, यूँ तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की युवा पीढ़ी में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं जिनकी सुरीली आवाज़ें हमारे दिल को छू जाती हैं, या यूँ कहें कि उनके गीत सुने तो जी चाहता है सुनते ही रहें। तो बॉलीवुड में ऐसे ही एक युवा मंझे हुए मशहूर पार्श्व गायक हैं पपॉन।

रुदाव पापा उनका जन्म 24 नवंबर 1975 को गुवाहाटी असम में हुआ था। उनके पिता खगेन महंत एक जाने माने असमिया लोक गायक रहे हैं, तो जाहिर है उन्हें घर पर बचपन से ही संगीत का माहौल मिला। पापौन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक लोक संगीत की बारीकियों को खूब सीखा, जो उनके सुरीले स्वर में स्पष्ट रूप से झलकता है। और उनकी आवाज़ के यानी उनकी सुरों से श्रोता इस तरह से खींचे चले आते हैं जैसे मोह मोह के धागे जुड़ जाते हों।

पवन के गाए एक से बढ़कर एक बेहद चर्चित गानों से सजा है फिल्म जगत। कई फिल्म हैं जो चर्चित फिल्में हैं, उनके नाम बताए देते हैं। बॉबी जासूस, इश्किरा, मुबारका, दम मारो दम, संजू, दम लगा के हईशा, बर्फी, बेबी, मद्रास कैफे जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उनकी आवाज़ का जादू चला। साल 2011 में उनका गाना दम मारो दम फिल्म से था और ये गाना उनका पहला सफलतम गीत था जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया।

फिल्म संगीत एक ही फनकार, अभी आप सुन रहे थे। आज फनकार थे जाने माने मशहूर पार्श्व गायक पापॉन। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अपराह्न के बजे हैं 3 और पेश है सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में संगीत का परचम लहराया पंचम दाने, जिन्हें हम राहुल देव बर्मन के नाम से जानते हैं, और अपने पिता जाने माने संगीतकार सचिन देव बर्मन की छत्र छाया में संगीत की उन्होंने बारीकियां सीखी और इस संगीत की समृद्ध परंपरा को उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया। आरडी बर्मन, राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा को आज हम खास तौर पर याद कर रहे हैं, क्योंकि आज 27 जून उनकी जन्म जयंती है। तो श्रोताओं, उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए आज उनकी संगीत यात्रा के चंद अनमोल नगमे पेश कर रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों में।

तो सुधों 27 जून 1939 को राहुल देव बर्मन का जन्म कोलकाता में एक बांग्ला परिवार में हुआ। इनके पिता सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन हिंदी सिनेमा और बांग्ला फिल्मों के दिग्गज संगीत निर्देशक रहे, संगीतकार रहे। वहीं इनकी मां मीरा देव बर्मन बांग्ला फिल्मों की गीतकार।

तो जाहिर है ऐसे संगीतमय सुरों से सजे और सधे परिवार में पंचम दा ने संगीत को समझा, जाना, पहचाना और जिया। कामयाब पिता की संतान भी कामयाब हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि विशाल वृक्ष के नीचे पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। कई विरले उदाहरण भी हैं, लेकिन एक उदाहरण ये पिता पुत्र की जोड़ी भी रही, यानी सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन, जिन्होंने संगीत की मधुरता को करोड़ों लोगों के बीच इस तरह से बिखेरा कि उन नगमों की खुशबू से सराबोर है आज भी सदाबहार नगमे जो हम सुनते हैं। हम भी उन्हें जीते हैं, मुस्कुराते हैं, गम में उम्मीद के दीपक जलाकर जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, उनका घर संगीतमय था तो जाहिर है बड़े बड़े दिग्गजों का आना जाना उनके वहाँ लगा ही रहता था, महफिलें जमती थीं और छोटे से राहुल देव बर्मन भी गुपचुप हिस्सा लिया करते थे और संगीत का जादू उन पर बचपन से ही छा गया था।

श्रोताओं, राहुल देव बर्मन जी का बालपन कलकत्ता में उनकी दादी के पास गुजरा था। अक्सर वो मुंबई अपने पिता सचिन देव बर्मन के घर आते जाते रहते। सचिन दा के घर के पास अनादि बनर्जी का निवास था। वहाँ स्ट्रगलर म्यूजिशियन सिंगर्स का जमावड़ा लगा रहता था। उन्हीं के घर पर उस दौर के लोकप्रिय गीत डोल रही है नैया मेरी की रिहर्सल हो रही थी। दादामुनि अशोक कुमार बालक राहुल से भी सुर लगाने को कहते। राहुल सुर लगाते समय सारे ग म से लेकर जब प पर आते तो अटक जाया करते थे। इसी बात को हंसी मजाक के साथ उनका नामकरण हो गया पंचम। और यही पंचम सुरों का इतना महान कलाकार बनेगा, सुरों को ऐसे साधेगा, तब किसने सोचा था। और यही पंचम नाम ताउम्र उनकी जिंदगी की पहचान बन गया।

तो श्रोताओ, एस डी बर्मन की वजह से आर डी बर्मन को फिल्म जगत के सभी लोग जानते थे। पंचम को माउथ ऑर्गन बजाने का बहुत शौक था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस समय दोस्ती फिल्म में संगीत दे रहे थे, उन्हें माउथ ऑर्गन बजाने वाले की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि पंचम ये काम करें, लेकिन उनसे कैसे कहें, क्योंकि वो एक सुप्रसिद्ध संगीतकार के बेटे थे। जब ये बात पंचम को पता चली तो वो फौरन राजी हो गए और दोस्ती फिल्म में उन्होंने माउथ ऑर्गन बजाया। और महमूद से भी पंचमदा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो जाने माने हास्य कलाकार महमूद ने पंचमदा से वादा किया था कि वो स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्हें अपनी फिल्म में ज़रूर अवसर देंगे, और उनका ये वादा पूरा हुआ छोटे नवाब फिल्म के जरिए।

पंचमदा को कई वाद्य बजाने में महारत हासिल थी और संगीत की शिक्षा उन्होंने ली ब्रजेंद्र विश्वास से, जो कि तबला वादक थे, और उस्ताद अली अकबर खां से सरूद की भी उन्होंने शिक्षा ली और इनकी फिल्मों में विविध तरह के वाद्यों का प्रयोग उन्होंने किया है। ये हम जब भी उनके गीत सुनते हैं तो हमें साफ नज़र आता है। उनकी पहली फिल्म संगीतकार के रूप में यूं तो गुरुदत्त की फिल्म गौरी थी और दो गाने उनके रिकॉर्ड भी हुए, बाद में ये फिल्म अधूरी रह गई, इसका प्रदर्शन नहीं हो पाया। तो छोटे नवाब फिल्म वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया और बचपन से ही संगीतकार बनने की तमन्ना लिए ही वो बड़े हुए और अपने पिता की कई फिल्मों की धुनें उन्होंने खुद रची थी। पर्दे पर नाम सचिंदा का होता था लेकिन धुनें जो होती थीं वो पंचमदा की होती थीं। और

उनमें कई गाने हैं जैसे फंटूश का गाना है, इसके अलावा और भी कई गाने हैं जैसे आँखों में क्या, तो पहला बादल, अरे यार तुम भी हो गज़ब जैसे धुनों को कंपोज करने का श्रेय पंचम दा को है, भले ही फिल्मों में सचिन दा का नाम आया है।

श्रुतो संगीत के नए नए प्रयोग किए पंचमदानी और कंघी चम्मच बोतल के ढक्कन और कांच के गिलास जैसे कई वाद्यों को वो एक तरह से अपने संगीत में उनका इस्तेमाल करते थे और एक नई तरह का संगीत पैदा कर देते थे। जैसे बहारों के सपने फिल्म में लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गीत आजा पिया तो है प्यार दूं, इसमें सिर्फ गिटार की धुन है। तो आइए सुनते हैं।

सुतों ऐसी यादों की बारात फिल्म में उन्होंने जो संगीत दिया वो तो बेमिसाल रहा ही। और एक बार जब वो कहीं बैठे थे और उन्होंने ग्लास की आवाज़ को महसूस किया तो कांच के ग्लासों से ही उन्होंने एक धुन बना दी और ये यादों की बारात फिल्म का बेहद मशहूर गाना हुआ।

1760 से लेकर 90 के दशक में लगभग 330 फिल्मों में संगीत देने वाले आर डी बर्मन ने ही बॉलीवुड की पहचान वेस्टर्न म्यूजिक से करवाई और पाश्चात्य संगीत के साथ फ्यूजन म्यूजिक में उनका आज तक कोई तोड़ नहीं है।

तो श्रोताओं, जहाँ पाश्चात्य संगीत की बात होती है, वहीं शास्त्रीय संगीत को भी बहुत ही खूबसूरती से पेश किया अपने संगीत के जरिए पंचम दा ने अपनी फिल्मों में।

श्रुतों, पंचम दा का मानना था कि हर चीज में संगीत है। यही कारण है कि वो रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल भी संगीत निर्माण में कर लिया करते थे। बताया जाता है कि अपने टीम के संगीतकारों को कपड़े उतारने के लिए भी वो कह देते थे, ताकि उनकी पीठ पर ड्रम बजाकर वो एक खास तरह का म्यूजिक क्रिएट कर सकें। यहाँ तक कि उन्होंने सोडा वाटर की बॉटल्स को भी म्यूजिक में प्रयोग किया और फिल्म खुशबू, जो कि साल 1975 में प्रदर्शित हुई, उसमें ओ मां झीरे इस गाने के लिए उन्होंने गांव वाला फील लाने के लिए आटा चक्की से आने वाली आवाज़ उन्हें चाहिए थी। इसके लिए सोडा वाटर की दो बॉटल्स मंगाई गई। वो एक एक कर हर बोतल को थोड़ा सा सोडा खाली करते और उसमें फूंकते जाते, जिससे एक थुप थुप थुप थुप की आवाज़ आती है, और उसी को इन्होंने अपने इस गाने में इस्तेमाल किया।

हृदयों एक लंबी फेहरिस्त है, एक विराट विरासत है, समृद्ध परंपरा है उनके गीतों की, जिन्हें आधे घंटे के प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ही असंभव है। और हमने कोशिश की कि उनके कुछ समुद्र से कुछ हम नगमे, जैसे मोती लेकर आते हैं वैसे ही कुछ नगमे पेश करने की कोशिश की। और ऐसे महान संगीतकार को हम आज याद कर रहे हैं, ख़ासकर आज उनकी जन्म जयंती है। 4 जनवरी 1994 को वो इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। संगीत की एक समृद्ध और विराट जो उन्होंने विरासत छोड़ी है वो हम सभी के लिए प्रेरणा से भरी है, और हमेशा उनके सदाबहार नगमे इन फिजाओं में गूंजते रहेंगे, हम उन्हें गुनगुनाते रहेंगे। आज सदाबहार फिल्मी गीत का सफ़र बस इतना ही। इजाज़त दीजिए अंजू पांगती को। नमस्कार।

सदाबहार फिल्म गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ हो रही है। अब आप सुनेंगे समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा

0: भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली MDMK पार्टी ने DMK के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल के EAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और ज्वेसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहा, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत सिंह लोधियाल का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, हेमंत सिंह लोधियाल के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम। ये सभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होगा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी बॉडी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेलन केलर जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यमिता दिवस, महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि और

हेलन केलर जयंती विषयों पर। किसानवाणी का समय रहेगा शाम 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी कृषि में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा परीक्षण विषय पर क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। साथ ही इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सरकार के 12 वर्ष समेकित कृषि एवं सब्जी उत्पादन विषय पर रमा तिवारी से भेंट वार्ता। रात्रि 8 बजे हम प्रस्तुत करेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ अंबिकापुर नगर निगम के गार्बेज कैफे के प्रभारी श्री रितेश सैनी से भेंट वार्ता। भक्ति संगीत का समय रहता है संध्या 6:41। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर कार्यक्रम सबरस पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:40 और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम इंद्रधनुष में। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब प्रस्तुत है कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

सबरस भर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:40 और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम इंद्रधनुष में। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब प्रस्तुत है कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह 9:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ अंबिकापुर नगर निगम के गार्बेज कैफे के प्रभारी श्री रितेश सैनी से भेंटवार्ता। सुबह 11:00 माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10:00 रविवासरी संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। प्रातः 7:20 और सुबह 10:30 पर प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:05 पर पुनः उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। विचार बिंदु कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोटी कपड़ा और मकान विषय पर विचार प्रातः 6:05 पर। आज की बात का समय रहता है प्रातः 6:40। देशगान आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर। कार्यक्रम विविधा हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ का 138वां भाग। बालवाटिका प्रसारित होगा प्रातः 8:30 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे वन महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, डॉक्टर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधी दिवस। महिलाओं के कार्यक्रम घर संसार का समय रहेगा दोपहर 12:30 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी ऊर्जा संरक्षण की बात विषय पर। साथ ही कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाती विषय पर महिला प्रेरणा उत्थान समिति की अध्यक्ष श्रीमती रेखा आर्या से गीता कनवाल की क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। दोपहर 1:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम रूपक जीवन धारा कोसी। किसान भाई खेती की बातें कार्यक्रम सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। युवाओं के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी स्क्रीन टाइम कैसे कम करें विषय पर। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 5:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि प्रसारित होगा शाम 7:15 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषक सहभागी बीज उत्पादन विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और संचालन करेंगे श्री देवेंद्र सिंह कारकी। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम लोकमंजरी में। दोपहर 2:00 कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत में। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:41 पर। प्रादेशिक संगीत आप सुनेंगे शाम 7:00। शास्त्रीय संगीत प्रसारित होगा सुबह 11:30 पर। सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:05 पर कार्यक्रम सबरंग में। दोपहर 1:15 पर रात्रि 8:00 कार्यक्रम सबरस में और रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में। सुबह 10:35 पर सुरबहार में। 12:00 कार्यक्रम मेरी पसंद में। अपराहन 2:45 पर एक ही फनकार में। अपराहन 3:00 सदाबहार फिल्मी गीतों में। शाम 7:40 और 9:15 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी से पहली बार मिलते हैं और बिना एक भी शब्द बोले आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी है या फिर बेहद डरा हुआ है। ऐसा कैसे होता है? दरअसल, हमारे बोलने से पहले हमारा शरीर बोलना शुरू कर देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज यानी हमारी शारीरिक भाषा की। तो मशहूर मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है, बाकी का 93% असर हमारी आवाज़ के उतार चढ़ाव और हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है। यानी आप क्या कह रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कैसे कह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं एक अच्छी और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के मूल मंत्र। पहला है आई कांटेक्ट, ये आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। और दूसरा है एक प्यारी सी मुस्कान। हमारी प्यारी सी एक मुस्कान सामने वाले को बोलने में सहज महसूस कराती है। बैठने और खड़े होने का तरीका, ये आपके आत्मबल को प्रदर्शित करता है। और साथ ही दोस्तों, अक्सर होता है कि हम हाथों से इशारा करते हैं, जो कई बार सही होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा करें तो ये हमारे डर को भी प्रदर्शित करता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ अपने शब्दों को ही नहीं, अपने हाव भाव को भी सहारें। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अब हो गया है समय आपके मनोरंजन का। तो सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पर।

0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अब सुनाते हैं आपको हेलेन केलर के 147वें जन्मदिवस पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 27 जून 2026 को प्रसिद्ध समाज सेविका, चहुमुखी प्रतिभा संपन्न सुश्री हेलेन केलर के 147वें जन्मदिवस पर हेलेन केलर जयंती समारोह पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय सभागार अल्मोड़ा में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेविका श्रीमती रीता दुर्गापाल थी। वह विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती वसुधा पंत, प्रख्यात पर्यावरणविद व अध्यक्ष महिला कल्याण समिति अल्मोड़ा उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में दिनांक 6 जून 2026 को आयोजित भाषण प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को कर्नल स्वर्गीय श्री जेसी लोहनी जी की स्मृति में नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। तो प्रस्तुत है आज के इस कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: सभी का और बैठे हुए सभी अतिथियों का यहाँ से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम 27 जून को हमेशा हेलेन केलर डे मनाते हैं और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अल्मोड़ा इस दिवस को मनाने के लिए काफी प्रयासरत रहता है और काफी वर्षों से हम इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। और बाकी मैं इस संगठन के बारे में बताना चाहूँ आप सभी लोगों को, तो लगभग जो भी यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग इस संगठन के सदस्य हैं और कुछ लोग जो है इस संगठन को काफी सपोर्ट भी करते हैं और इस संगठन को सहयोग भी करते हैं। और मैं भी इस संगठन की 2020 से लगातार सदस्य के रूप में हूँ।
0: अतिथियों के स्वागत में नेहा आगरी द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया।
2: आप सभी को मेरा प्रणाम। हेलेन केलर की जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां।

0: कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन देते हुए आप हैं भूपेंद्र सिंह राणा जी।
1: नगर केलर के 147वें जन्म दिवस पर सम्मिलित हैं, समारोह मना रहे हैं। इस अवसर पर नगर केलर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे अभी भाषण देंगे, लोगों ने बताएंगे उनके बारे में। उनके बारे में बताना मैं समझता हूँ इस समय कार्यक्रम को लंबा करना है। बस इतना कह सकता हूँ कि हेलन केलर एक ऐसी चमत्कारी व्यक्तित्व रही, वो और उनकी टीचर एनी सुलेमन दोनों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि जो भूतकाल में कभी हुआ न भविष्य में होगा, न भूतोक न भविष्य थी। ऐसा चमत्कार जिसको कि सुनकर की आदमी सोच पड़ जाएगा कि कैसे ये हो रहा है। बहुत से दृष्टिबाधित है, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: दृष्टिबाधित नेहा आगरी द्वारा अपनी खूबसूरत सी आवाज में सभी के सामने एक बेहद प्यारा लोकगीत प्रस्तुत किया गया।

0: कपाल।
1: हेलेन किलर के जन्मोत्सव पर आप सबका स्वागत है। हेलेन किलर के विषय में सब लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं बच्चे उनको आज फिर जो नए लोग हमारे घर में आए हैं वो बतलाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक संदर्भ अवश्य बतलाना चाहूंगा कि हाल ही में एक बहन जिनको की पद्मश्री अलका को राष्ट्रपति महोदय ने दी, वो भी पूर्ण रूप में विकलांग थी, वो चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर आई और उसके बाद उनमें वो शक्ति आई, वो व्हील चेयर छोड़कर राष्ट्रपति जी से उन्होंने पुरस्कार दिया। वो बहुत सुंदर गायिका थी लेकिन अब वह गाना नहीं गाती है, न गा सकती है, 2 साल से वो बेडरिडन है। कहने का मतलब है कि जैसा अभी बहन ने कहा कि हार मत मानो, तो उस बहन ने अलका जी ने भी हार नहीं मानी और व्हील चेयर से उठकर पद्म अवार्ड लिया। कहने का यही तात्पर्य है, पैसा सब कुछ नहीं होता है लेकिन मन में अगर कोशिश करने की इच्छा हो तो बहुत कुछ होता है।
0: आप हैं महेंद्र सिंह अधिकारी, संगठन के पूर्व महासचिव।
2: हेलेन के जो बताया गया वो तो सब आप लोगों सबको पता है, सब बताया गया। वो जिस प्रकार एक दृष्टिवादी और मुंह बगे और कान नहीं सुनने वाले उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और समाज के लिए महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए, उसकी प्रेरणा लेकर मैं दृष्टि दिव्यांग लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम भी कोई ना कोई कार्य जरूर करें, जो हमसे हो सकता है उस कार्य को हम करें, उनकी प्रेरणा लेकर तो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। इस संबंध में मैं दिव्यांग जनों से निवेदन करूंगा कि आप खाली न बैठें, कुछ न कुछ कार्य करते रहें, जिससे जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उनको करें, जैसे झाड़ू बनाना, रस्सी बांधना और लिफाफे बनाना, ये कार्य करते रहें ताकि हम खाली न बैठें। एक इसमें मैं ये बताता हूँ कि मैं पेंशनर हूँ, हम अपना रोजगार कर सकते हैं, खुद ही खा पी सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, फिर भी मैं अखबारों के लिफाफे बनाता हूँ, क्यों मैं समय नहीं काटता, मेरा खाली समय में बैठ नहीं पाता, तो मैं लिफाफे बनाता हूँ। लिफाफे बना के मैंने ये सोचा कि मतलब चलो लिफाफे बनाओ, अपना समय कट जाता है, अपने का समय बीत जाता है, तो मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो इसलिए मैं अखबार के लिफाफे बनाता हूँ। ये मैं दिव्यांगों से कह रहा हूँ कि वो लोग अगर ये बनाएं, ये लिफाफे बना लें, झाड़ू बना लें, रस्सी बना लें, तो कोई ना कोई कार्य जो हमसे हो सकता है हम खाली बैठे न रहें।
0: कार्यक्रम में एक बेहद खूबसूरत प्रस्तुति दीवान जी द्वारा लोकगीतों के माध्यम से सभी के सामने प्रस्तुत की गई।
3: जा दे हरा दो दंदा तुम्हारी हमारी भेदा।

0: आप हैं पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान।
1: कभी हेडेक होती है, किसी को शारीरिक कमी होती है, किसी को मानसिक कमी होती है, किसी को जो है अंदर की दहशत की कमी होती है, कभी हेडेक होती है, लेकिन इस कमी को कभी महसूस नहीं करने देना चाहिए। समाज में खड़े होकर के काम करने के लिए कि समाज के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको, और सामाजिक दृष्टिकोण से हम समाज में आपको सम्मान देना चाहते हैं, तो ऐसे हमारे से भाई बहन यहाँ पर बोलते थे। इतिहास हम देखेंगे, अतीत के इतिहास को हम पढ़ना चाहेंगे, इतिहास को पढ़े तो उन्हें जो यहाँ के अमेरिका में इतना निवास हुआ था, और पहली देश पूरे विश्व के अंदर पहली व्यक्ति जिन्होंने दृष्टि बाधित हो गई और बधिर हो गई है, उसके बाद भी ग्रेजुएशन करने का जो एक बहुत संकल्प था और ग्रेजुएशन करे पहली महिला थी, ऐसी महिला को हम प्रणाम करते हैं।
0: 6 जून 2026 को आयोजित भाषण प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को कर्नल स्वर्गीय श्री जेसी लोनी जी की स्मृति में नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
2: जिया गोस्वामी यहाँ पर हैं, प्रति दीदी मेरे यहाँ पर हैं।
0: आप हैं विशिष्ट अतिथि ग्रीन हिल्स ट्रस्ट से श्रीमती वसुधा पंत, प्रख्यात पर्यावरणविद।
3: मैं सबसे पहले आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और एक विशिष्ट अतिथि का दर्जा तो बहुत अपने आप में एक मेरे लिए बहुत मूल्यवान पद है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि ये जो कार्यक्रम जेलन केलर जी की स्मृति में यहाँ पर आज आयोजित किया जा रहा है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, उनको अपना और अपनी समस्त संस्था की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और एक ये बात केवल किसी भी दिव्यांग जन के लिए ना होकर के एक हर व्यक्ति के लिए एलन केलर जी एक बहुत सम्मानित और बहुत जिसको कहा जाए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। वो अपने आप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ऐसे व्यक्तित्व तो वास्तव में ईश्वर की ऐसी गणना होते हैं जो मानवता को एक संदेश देने के लिए पैदा होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अमिट छाप के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। हम में से हर व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आता है और कई बार आता है जब हम मायूस होते हैं। जरूरत है कि ऐसे व्यक्तित्व को सामने रख करके अपनी उस मायूसियत को ओवरकम करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए और जो कुछ हो सके वो अपना अधिक से अधिक समाज को देने की एक इच्छा अपने मन में रखी जाए। हेलन केलर जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन को केवल अपने तक ही सीमित न रख करके समाज के हर वर्ग के लिए अपने को समर्पित किया, ऐसे ही हर व्यक्ति को हम उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
0: मुख्य अतिथि के रूप में आप हैं समाज सेविका श्रीमती रीता दुर्गापाल, अध्यक्ष महिला कल्याण समिति अल्मोड़ा से।
4: आज के इस दृष्टिहीन समूह के कार्यक्रम में उपस्थित मंच एवं उपस्थित सभी महानुभाव मेरी बहन केलन केलर जी के बारे में आज उनका 147वां जन्मदिन है जिस उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। हेलन केलर, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि हेलन केलर जी से प्रेरणा लेकर हम सब जिस समाज से कुछ लेते हैं तो समाज को जरूर कुछ दें, और ये केवल अपने

0: से जीना ही जीना नहीं है। दृष्टि बाधित होते हुए भी तुम्हारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, जैसा कि सभी लोग आपको बता देते हैं। तो इसलिए हम भी उनसे प्रेरणा लेकर समाज में कुछ करें तो ही ये समाज भी आगे बढ़ेगा और अपने को भी संतोष मिलेगा।
1: इसी के साथ संपन्न होती है आज दिनांक 27 जून को प्रसिद्ध समाज सेविका सुश्री हेलेन केलर के 147वें जन्म दिवस पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय सभागार अल्मोड़ा में आयोजित हेलेन केलर जयंती समारोह की ये रेडियो रिपोर्ट। संकलन वाचन व संपादन मीनाक्षी आर्या, प्रस्तुति दीपिका पंत। दोस्तों, अभी आपने सुनी हेलेन केलर जयंती पर अल्मोड़ा में आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं हमारे आज के अंक खेल समाचार की ओर और जानते हैं सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण खेल समाचारों के बारे में। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट डूरेंट कप का अगला सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा और इसका फाइनल 23 अगस्त को खेला जाएगा। इस 138 साल पुरानी टूर्नामेंट में 24 टीम हिस्सा लेंगी, जिनमें दो विदेशी टीम भी शामिल हैं। 24 साल से छठे विश्व कप खिताब का इंतजार कर रहे ब्राजील की टीम को धाकड़ फॉरवर्ड विनीशियस जूनियर ने अपने जादुई प्रदर्शन से विश्व कप के नॉकआउट दौर में पहुंचा दिया है। उनके दो गोल की मदद से ब्राजील ने गुरुवार को स्कॉटलैंड को 3-0 से हरा कर शिकस्त दी है। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप का शानदार समापन 25 पदकों के साथ किया। इसके साथ ही भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। गुरुवार को 50 मीटर पिस्टल ने भारत में 4 पदक और जीते। अल्जीरिया की 12 साल में पहली जीत। अल्जीरिया की टीम एक समय एक गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन फिर दूसरे हाफ में वापसी करते हुए उसने पेनाल्टी कॉर्नर पर 2 गोल करके जॉर्डन को 2-1 से हरा कर विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत कर ली। विश्व कप 2014 के बाद अल्जीरिया की ये पहली जीत है। तो दोस्तों, ये थे खेल समाचार। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: कभी नहीं रुकती, लेकिन इतिहास के पन्नों पर कुछ तारीखें हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। शुरुआत करते हैं भारत के उस गौरव से जिसने हमें अपनी माटी पर गर्व करना सिखाया। आज ही के दिन साल 1838 में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता महान उपन्यासकार और लेखक बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। वहीं आज का दिन इतिहास में एक महानायक की विदाई का भी गवाह है। साल 1839 में आज ही के दिन शेर पंजाब के नाम से मशहूर सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था। और बात अगर देश के सैन्य इतिहास की हो तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को कौन भूल सकता है। साल 2008 में आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी वैश्विक घटनाओं की जिन्होंने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल दी। अगर आज आप अपनी जेब से पैसे निकालने एटीएम जाते हैं तो याद रखिएगा कि साल 1967 में आज ही के दिन लंदन में दुनिया की पहली एटीएम मशीन लगाई गई थी। साथ ही आज शुरू के जादूगर आरडी वर्मन यानी हमारे पंचम दा की जयंती भी है। और साथ ही भारतीय खेल जगत की उड़न परी यानी पीटी उषा का जन्मदिन भी आज ही है। तो दोस्तों ये थे आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं।
1: के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
2: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
1: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
2: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
1: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं। जागो ग्राहक
0: जागो। दोस्तों बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर और नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है। अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर और भेजना चाहते हैं हमें तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9411001122। कल फिर होगी मुलाकात एक नए रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सभी श्रोताओं के मैं नीरू गोस्वामी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत छो आप सब लोग हमारे आज एक उत्तरायण कार्यक्रम में श्रोताओं कार्यक्रम में हल कुछ ज्ञानवर्धक चर्चा क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता और करूल अपो लोगों को मनोरंजन कुमाऊनी और गढ़वल लोकगीतनक माध्यम तो श्रोताओं कार्यक्रम शुरुआत करनो अपो लोगों दगर कुछ बातचीत दगर श्रोताओं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कोयले देशक अर्थव्यवस्था के रीढ़ मानी जानी यह उद्योग कम पूंजी में अधिक रोजगारक अवसर प्रदान करनी और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देनी इन्हीं महत्व के पहचानते हुए प्रत्येक वर्ष 27 जून के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाई जा श्रोताओं यह उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करूं यह रोजगार के बढ़ावा दियूं और स्थानीय संसाधनों को बेहतर उपयोग करूं और महिलाओं युवाओं और नए उद्यमियों के अपन व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करूं यह एक माध्यम देश में नवाचार उत्पादन और निर्यात के लिए बढ़ावा मिलूं श्रोताओं यह दिवसक मुख्य उद्देश्य लोगों के नान और मध्यम उद्योगों के महत्व के बारे में जागरूकरण नई उद्यम के प्रोत्साहित करण और आर्थिक विकास में उनर योगदान के सम्मान देण छू श्रोताओं यह दिन आत्मनिर्भर भारतक लक्ष्य के मजबूत बनौने के लिए संदेश दियो और सरकारक विभिन्न योजनाओं ऋण सुविधाओं प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डिजिटल तकनीकों के माध्यम या क्षेत्र के बढ़ावा देनी यह एक नई उद्योग स्थापित करण और मौजूदा उद्योगों के विकसित करण में सहायता मिले श्रोताओं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम देशक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार छिन यह रोजगार उत्पादन और आर्थिक विकास के गति ले देनी यह कह लीजिए हमन के लघु एवं मध्यम उद्योगक क्षेत्र के प्रोत्साहित करण चाहे ताकि हमारा देश अधिक आत्मनिर्भर समृद्ध और विकसित बन सको

0: श्रोताओं अल्लाह आप लोगों सुनो सैलजा मसीहक स्वर में गाई और लोकगीत। श्रोताओं स्वस्थ मनुष्य सबसे ठुल पूंजी छू स्वास्थ्य, और यदि शरीर और मन स्वस्थ हो तो मनखिक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सके। श्रोताओं आजक भागदौड़ भरी जीवन शैली, तनाव और अनियमित खान पान कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ते जानी, यसमें दैनिक योग एक सरल प्राकृतिक और प्रभावी उपाय छू जो शरीर मन और आत्मा के स्वस्थ धरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभो। श्रोतो योग भारतक प्राचीन सांस्कृतिक अमूल्य देन छू, इमें आसन प्राणायाम और ध्यानक माध्यमल शरीर और मनक बीच संतुलन स्थापित करी जा। श्रोतो नियमित योग करणल शरीर लचिल और मजबूत बनो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और मानसिक शांति योगल हम प्राप्त कर सकनो। और प्रतिदिन योग करनल रक्त संचार भल हो, पाचन तंत्र मजबूत हो और शरीर में स्फूर्ति बढ़े रहे। श्रोताओ योग तनाव चिंता और अवसाद के कम करण में ले बहुत सहायक हो। यह मधुमेह उच्च रक्तचाप मोटापा और हृदय रोग जस जीवन शैली जुड़ी कई बीमारियों जोखिम के कम करण में बहुत मदद कर सकूं। और नियमित योगल एकाग्रता आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ले विकसित हैं। श्रोताओं योग केवल रोगों के उपचारक माध्यम न छो बल्कि रोगों के रोकथामक प्रभावी तरीक छो। यदि प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक योग करी जाओ तो संतुलित आहार ली जाओ और पर्याप्त नींद ली जाओ तो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन हम जी सकनो। यही कारण योग के निवारक स्वास्थ्य देखभाल ले कही जा। और श्रोताओं योग जो छू वो दैनिक योग स्वस्थ संतुलित और खुशहाल जीवनक आधार छू। हम यह हमन के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूपल मजबूत बनो। तो श्रोताओं यही विषय पर अगिल के कार्यक्रम में हम आप लोगों के सुनो या क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता विषय छू प्रतिदिन योगक माध्यमल स्वास्थ्य देखभाल। और यह हमर दगड़ बातचीत करण लागरी पीएन गोस्वामी जो व्यायाम शिक्षक छिन, और इना दगड़ बात करण लागरी नीरू गोस्वामी। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है जो शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। और आज की व्यस्त जीवन शैली में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शारीरिक शिक्षक पीएन गोस्वामी जी। आइए इनसे करते हैं कुछ बातचीत योग से संबंधित। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमें और हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि योग क्या है।
1: योग आत्मा का परमात्मा से मिलन। सही मायने में देखा जाए तो आज की भागदौड़ जिंदगी में लोग योग को अपना रहे हैं ताकि वो अपने जीवन शैली को सही बना पाए और अपने जीवन शैली में निरोग रहें। और निरोग रहने के लिए कई आयामों को अपनाते हुए, योग के कई स्टेप्स को अपनाते हुए अपने आप को निरोग रखते हैं।
0: जैसा कि हम योग से संबंधित अभी आपसे जानकारी ले रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग क्यों ज़रूरी है।
1: क्योंकि आज मानव जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुका है और वो अपनी आम जिंदगी में जो है कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो है पूर्ण रूप से व्यस्त रहा। एक उचित कार्य को करने के लिए शरीर का और मस्तिष्क का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। जब सही शरीर स्वस्थ होगा और मन हमारा स्वस्थ होगा तभी हम किसी कार्य को जो है सही तालमेल से कर पाएंगे। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर अधूरी है तो जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का कार्य हो, गृह कार्य हो, चाहे वो किसान का कार्य हो, या चाहे वो जो है ज़िंदगी के और कई कार्य हो, उन कार्यों को जो है सही प्रकार से कर पाएगा।
0: जी, योग करने का सही समय कौन सा है?
1: मुख्यतः योग करने के लिए प्रातःकालीन समय को उचित माना गया है। लगभग समाज में सभी लोग जो है ज़्यादातर अपना समय जो है, जो लोग योग में शामिल हैं वो लोग प्रातःकालीन समय को उचित मानते हैं, और क्योंकि प्रातःकालीन समय पे जो है पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, हम प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए एक विषैली गैस है वो बाहर निकलती है, जिसके द्वारा एक तो हम ऑक्सीजन का पर्याप्त प्रचुर मात्रा में जो है समावेश अपने शरीर में कर सकते हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है, और इससे जो है जैसे कि अस्थमा वगैरह की बीमारियां हैं वो दूर होती है, और जो है हमें स्वस्थ ऑक्सीजन के द्वारा रक्त संचार में भी जो है इसका फायदा होता है। प्रातःकालीन समय में शरीर भी हमारा जो है, हमारी हड्डियाँ, हमारी मसल्स जो है काफ़ी लचीली रहती हैं, जिसके द्वारा हम एक अच्छी तरीके से योग को कर सकते।
0: जैसा कि आप एक शारीरिक शिक्षक हैं और आप खेलकूद वगैरह बच्चों को कराते हैं, तो आप बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि जो भी आप एक्सरसाइज या जो भी खेलकूद करें वो आप खाली पेट करें, तो क्या योग में भी यही प्रक्रिया होती है?
1: हाँ जी हाँ, मुख्यतः तो शारीरिक शिक्षा के लिए तो न्यूट्रिशंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि ड्यूरिंग द कंपटीशन, प्री कंपटीशन और आफ्टर द कंपटीशन कुछ एलिमेंट्स एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। शारीरिक खेलों के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, उनको खाना खाने के बाद भी जो है एथलीट कर सकता है, खिलाड़ी कर सकता है, लेकिन योग योग अपने आप में एक अलग माध्यम है। योग को मुख्यतः जो है खाली पेट ही किया जाता है, क्योंकि योग के दो प्रकार हैं, एक योग के द्वारा हम अपने एक्सटर्नल पोर्शंस की जो है एक्सरसाइज करते हैं, और दूसरा जो है हम इंटरनल पोर्शंस की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल के द्वारा हम अपने बाहरी पोस्चर को ठीक करते हैं, इंटरनल के द्वारा हम अपने आंतरिक ऑर्गन्स की सफाइयाँ करते हैं।
0: जी, अक्सर हम

0: सोचते हैं कि योग जो है वो हमें, जैसा कि अभी आपने बताया कि सुबह के समय ही करना चाहिए, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह के समय वक्त नहीं मिल पाता है, तो वो किस टाइम पर योग करें?
1: कम से कम योग करने के लिए भोजन और योग के मध्य में कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर होना चचाहिए। शाम को भी भोजन के लगभग 3 से 4 घंटे बाद योग को किया जा सकता
0: है। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि क्या हर उम्र के लोग योग कर सकते हैं?
1: जी हाँ, आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में और आज तो समाज में जो है कई प्रकार के जो एलिमेंट है बैलेंस डाइट के अंदर, जिन एलिमेंट्स के हम जिक्र करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, तो आजकल जितने भी प्रकार के एलिमेंट हमें बाजार में मिल रहे हैं उसमें कई प्रकार के केमिकल्स वगैरह मिले हुए रहते हैं। अगर हम आज से 40-50 साल पुरानी लाइफस्टाइल को देखें और आज की लाइफस्टाइल को देखें तो सामग्री में जो सामग्री हम एक आम आदमी इस्तेमाल करता है उसमें कई प्रकार की केमिकल्स आज समावेशित हैं और जो कि आज आदमी के लिए प्रचुर मात्रा में जो है उपयोगी नहीं है और उनसे उस प्रकार के जो है तत्व भी हमें प्राप्त नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि योग के द्वारा हम उन चीज़ों को जो है थोड़ा बहुत दूर कर सकते हैं और ये हम हर उम्र के व्यक्ति के लिए आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर व्यक्ति जो है किसी न किसी बीमारी से लगभग जो है अपने आप में समावेशित है और उन बीमारियों को दूर करने के लिए आज हमारे चिकित्सक लोग भी जो है एडवाइस करते हैं कि हर उम्र की व्यक्ति को कुछ न कुछ गतिविधियां योग से संबंधित करनी चाहिए।
0: कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें योग नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पे करना चाहिए?
1: जी हाँ, कुछ इस प्रकार के शारीरिक दोष भी व्यक्ति में हो जाते हैं अपने जीवन में। जैसे कोई व्यक्ति धनुरासन कर रहा है और धनुरासन करते समय पता चला कि उसकी बैकबोन में जो है प्रॉब्लम्स है, बैकबोन में उसके ऑपरेशन हुए हैं कभी भविष्य में, या उसके बैकबोन्स में कई बहुत क्रोनिक डिजीज है, तो अब उस स्थिति में जो है उस धनुरासन को करने का एक आम व्यक्ति के लिए कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अगर वो धनुरासन करता है तो उसको उसके फायदे के बजाय उसका नुकसान हो सकता है। और इसी प्रकार से जिस पार्टिकुलर पार्ट का इस्तेमाल वो योग के समय में कर रहा है अगर वहाँ पर कोई इंजुरी अगर उसको है, हार्ड इंजुरी है, तो उसको उस प्रकार के योगों को से दूर रहना।
0: जी, अब जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और जैसा कि आपने बताया कि कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उन लोगों को योग है वो डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।
1: उचित जीवन शैली को जीने के लिए, क्योंकि आज योग बहुत जो है पॉपुलर हो गया, हर आदमी जागरूक है कि योग में जो है हमें किन किन चीज़ों को करना है और क्या क्या हमारे लिए अच्छा है, और एक योगाचारी जो है इसका उचित जो है परामर्श दे सकते।
0: जी, योग से शारीरिक स्वास्थ्य को क्या लाभ मिलता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं, तो और क्या क्या चीज़ उससे हम दूर कर सकते हैं?
1: योग एक्चुअली योग के द्वारा जो है हम अपनी मांसपेशियों को, अपनी हड्डियों को मजबूत करते हैं और जो है हम अपनी मसल्स को लचीला बनाते हैं, हड्डियों को लचीला बनाते हैं, जिसके द्वारा जो है शारीरिक गतिविधियों में जो है हमारा शरीर पूर्ण रूप से जो है शामिल रहता है। और योग के द्वारा जो हम अपनी मांसपेशियों, अपनी हड्डियों को लचीला बनाते हैं, वही शरीर जो है हमारे शारीरिक खेलों में उपयोग में आता है।
0: योग का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: योग के कई प्रकार हैं। कुछ योग तो जो है शारीरिक गतिविधियों के लिए होता है ताकि हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रख पाएँ, लचीला रख पाएँ और हम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाएँ। और कुछ प्रकार की गतिविधियाँ योग में ऐसी भी होती हैं कि जिनके द्वारा, जिनको हम षटकर्म कहते हैं, जिसमें 6 क्रियाएँ होती हैं, उन 6 क्रियाओं के द्वारा हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की सफाइयाँ करते हैं जो लगभग हर व्यक्ति को करनी चाहिए और वो माह में 1 बार या 2 बार व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। उससे जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई हो जाती है और हमारा डाइजेशन और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है मजबूत रहते हैं। योग जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अपना संपूर्ण शारीरिक विकास कर सकता है।
0: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने हमको बताया कि योग से संबंधित बहुत सी जानकारी दी, योग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: योग करते समय मुख्यतः हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमारा पेट पूर्णतः खाली होना चाहिए, एक प्रशिक्षित व्यक्ति के मार्गदर्शन में हमको सीखना चाहिए, और अभ्यास करते समय आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, मन को शांत रखना है, स्वच्छ और

0: हवादार स्थान पर रहना है, हो सके तो जहाँ पर पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में हो उस जगह का चयन करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमको ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और एक व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायी है। शुरुआत में जो है अधिक कठिन योगासन की ओर न जाते हुए जो है सरल आसन की ओर जाएं, और योग का जो है प्रकार जो है वो सीमित रखें, और उससे जो है अगर यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी और चोट वगैरह यदि हो तो पहले चिकित्सक की सलाह लें और उसके बाद योग।
1: जी, अंत में आप श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि योग आज एक सफल माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने जीवन शैली को अच्छा बना सकते हैं, और हम तभी किसी कार्य को, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे कोई विद्यार्थी हो, दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति हो, या कोई खेल के मैदान में काम करने वाला व्यक्ति हो, या इंडस्ट्रीज में काम करने वाला व्यक्ति हो, या कोई पूंजीपति हो, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, उन लोगों को सबसे पहले जो है इन कार्यों अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचता हूँ कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए योग और शारीरिक क्रियाएं जो हैं एक सशक्त माध्यम है।
1: जी, तो श्रोताओं, योग हमें स्वस्थ, प्रसन्न और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी योग को अपनाएं और अपने परिवार तथा समाज को भी स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करें। गोस्वामी जी, आपने हमसे बातचीत की और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अल्ले आप लोगों सुनो, यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता प्रतिदिन योगक माध्यम स्वास्थ्य देखभाल विषय पर, और यी व्यायाम शिक्षक पी एन गोस्वामी जी और इन्हें तगर भेंट करने लग रही नीरू गोस्वामी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्ले अपोलोगुन सुनो गोकुल सिंह बिष्ट व उनर दगड़ियों स्वर में गाई यो लोकगीत। श्रोताओं, आज एक दिन यानी कि 27 जून के हेलन केलरक जन्म ले भो और इनर जन्म 27 जून 1880 के ट्यूस्कम्बिया में हो। वो एक प्रसिद्ध लेखिका, शिक्षिका और दिव्यांग अधिकारों के समर्थक थी। उनर जीवन साहस, संघर्ष और आत्मविश्वासक प्रेरणादायक उदाहरण छु। श्रोताओ, यह कह लीजिए प्रत्येक वर्ष 27 जून के उनर जयंती मनाई जाए। श्रोताओ, केवल 19 महीनक आयु में बीमारी कारण हेलन केलरक दृष्टि और श्रवण शक्ति रह गई थी। यह बावजूद उन्होंने हार निमन और उनर शिक्षिकाल उनन के पढ़न लिखन और संवाद करण सीखा और अगिल चलवेर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। श्रोताओ, हेलन केलरर दिव्यांग लोगों के अधिकारों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए जीवन भर कार्य करो। उन्होंने समाज के यह संदेश दे कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत कोई ले कठिनाई सफलता राह में बाधा नहीं बढ़ सकन। श्रोताओ, हेलन केलरक जीवन हमन के साहस, आत्मविश्वास, शिक्षा और निरंतर प्रयास प्रेरणा दियूं। उनर जयंती पर हमन के उनर आदर्शों के अपनोन और दिव्यांग जनों के प्रति सम्मान, समानता और सहयोगक भाव धरण चाहिए।

0: श्रोताओं अल्लाह अपो लोगों सुनो रेखा उन्यालक स्वर में गाई और लोकगीत।
1: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
2: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।

श्रोताओ, समवेत स्वर में गाई यही लोकगीतक दगर हमारा आजक उत्तरायण कार्यक्रम इति के संपन्न हो। भोल अपू दगर फिर भेंट होल। नीरू गोस्वामी के अनुमति दियो। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 6:30 होने को है। अब उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अपनी सरकार जनता का द्वार। पात्र लाभार्थी योजनाओं को लेके लाभ कारू सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड को निर्माण योजना नीति क्रियान्वयन आवेदन चयन और जन कल्याणकारी योजनाओं और विभागों की पूरी जानकारी एक किताब में। नौच मेरी योजना
1: कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जनहित में जारी।
0: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं अभी आपन सुनी रैबार और रैबार से पहले जौनसारी लोकगीत बारू निराला का स्वरमा।
0: तो साहब आजक आधा कार्यक्रम पूरा हो गया और जरस बच्चों च आप अकन बोलन का कि न जानो आज होर छुई लगने आपक दगड़। लेकिन ये बात सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। 15 जुलाई तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। रीप परियोजना से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मिलेगा बड़ा बाजार। डोईवाला पेट्रोल पंप में प्रदेश का पहला हिरास आउटलेट खोला जाएगा। प्रदेश में कल शून्य से 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी, सभी तैयारियां पूरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। अब समाचार विस्तार से। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने आज पौड़ी में नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर कांवड़ मेले की तैयारियों की जमीनी हकीकत परखी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को 15 जुलाई से पहले सभी निर्माण और मरम्मत कार्य पूरे करने के स्पष्ट निर्देश दिए ताकि मेले के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सोलर लाइट, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, आपदा प्रबंधन तथा साफ सफाई की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। श्री स्वरूप ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारू आवागमन और आवश्यक सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण के विजन को प्रदेश सरकार धरातल पर उतार रही है। इसी कड़ी में देहरादून जिला प्रशासन अब जिले के व्यस्त पेट्रोल पंपों पर महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष हिरास आउटलेट स्थापित करेगा। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य स्तर पर जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता

0: का हुआ है। इसके तहत पहले चरण में डोईवाला के IOCL पेट्रोल पंप पर प्रदेश का पहला हिलांस आउटलेट खोला जा रहा है। इसके बाद अन्य पेट्रोल पंपों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन आउटलेट्स पर पर्यटकों और आम जनता के लिए उत्तराखंड के शुद्ध और प्रामाणिक उत्पाद उपलब्ध होंगे।
1: तो जनपद देहरादून में हमने एक जो हमारा डोईवाला विकास खंड है उसमें हमारा फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क पड़ता है, उसके निकट ही एक IOCL का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इसको स्थापित करने का हमारा है और हम जल्द ही मतलब इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस आउटलेट में हमारी स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी निर्मित उत्पाद हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं या स्पाइसेस हैं या अन्य दाल वगैरह, तो वो इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। और जितने हमारे जो लोग बाहर से आते हैं या पेट्रोल भरवाते हैं या हमारे अन्य राज्यों के भी उसमें लोग रहेंगे, तो ये के लिए एक अट्रैक्शन होगा और जो लोकल सामान है उसका एक लोकप्रियता लोगों में बढ़ाई जाएगी और SHG का जो अर्निंग्स है वो इसके माध्यम से हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
0: प्रदेश में इस बार फायर सीजन राहत भरा साबित हुआ है। वन विभाग की बेहतर तैयारी, आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और त्वरित कार्रवाई के चलते स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही। कई क्षेत्रों में समय समय पर हुई वर्षा ने भी आग को फैलने से रोकने में मदद की। फायर सीजन समाप्त होने के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में वनाग्नि की 580 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनसे करीब 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। वन विभाग के अनुसार यह आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में काफी संतोषजनक हैं और बड़े नुकसान को रोकने में सफलता मिली है। वहीं मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन सुशांत पटनायक ने बताया कि फायर वाचरों की तैनाती, कंट्रोल रूम की 24 घंटे निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग से आग की घटनाओं पर नियंत्रण किया जाता है।
2: हमारे पास कुल उत्तराखंड में 1438 क्रूज स्टेशन है और 40 मास्टर कंट्रोल रूम है जो पूरे गढ़वाल, कुमाऊं और वाइल्ड लाइफ एरियाज में सक्रियता से काम कर रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में मास्टर कंट्रोल रूम के साथ क्रूज स्टेशन के साथ हमारे QRTV स्थापित की गई है जो कि विशेषकर चारधाम मार्ग में प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। जो लोकल कम्युनिटीज है, वन पंचायत, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनकी भी सहयोग और सहायता ली जा रही है वनाग्नि नियंत्रण की दिशा में।
0: हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज रामघाट और कश्यप घाट क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के दौरान घाटों पर फैले कूड़ा कचरे को एकत्र कर उसके उचित निस्तारण के लिए नगर निगम को सौंपा गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से हरिद्वार की स्वच्छता बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। जिला प्रशासन का उद्देश्य गंगा स्नान और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश में कल शून्य से 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में चंपावत जिले में 269 पोलियो बूथों में 27,301 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि 29 और 30 जून को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। इसके अलावा कल मोबाइल बूथ के जरिए यात्रा कर रहे नौनिहालों को भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।
4: हमने पोलियो की पूरी तैयारी कर ली है और ये जो 28 तारीख को बूथ पे हमारे द्वारा पोलियो का कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसके बाद 29 और 30 को घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। सभी वैक्सीनेटर को इसके बारे में समझा दिया गया है। मोबाइल जो बूथ हैं वो एक खेती खान चौराहे में और एक जो है वो पंचेश्वर चौराहे पर है, जिसमें हमारे द्वारा पुलिस की और ITBP की हेल्प से जो भी गाड़ियां हैं वहां पे 0 से 5 साल तक के बच्चे जो भी हमें गाड़ी में दिखाई देते हैं हम सभी को अपने वैक्सीनेटर द्वारा पोलियो ड्रॉप पिलवाई।
0: डॉक्टर राठी ने जनता से भी अपील की कि वे अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं।
4: मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अपने बच्चों को बिना पोलियो ड्रॉप के ना रखें, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर का कोई भी अंग जो है वो बेकार हो सकता है और वो जिंदगी भर बेकार रहेगा, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्रिकॉशन ही बचाव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग व अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर आज मसूरी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मसूरी के नगर पार्षदों, स्थानीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल सहित अनेक प्रतिष्ठित होटलों, रिजॉर्ट्स व गेस्ट हाउस के संचालकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता डॉ. राजेश कुमार ने होटल व्यवसायियों को पर्यटन क्षेत्र में नशे की रोकथाम, NDPS अधिनियम के कड़े कानूनी प्रावधानों और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से ही उत्तराखंड को एक सुरक्षित और नशामुक्त पर्यटन राज्य बनाया जा सकता है। इसी दौरान सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों में नशामुक्त माहौल बनाने और जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। चमोली जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित नशा मुक्ति सप्ताह के तहत आज PM श्री राजकीय केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने छात्र छात्राओं और आमजन को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए स्वस्थ व नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। बाल संरक्षण अधिकारी रजनी पंवार ने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल, योग, व्यायाम और रचनात्मक गतिविधियों से युवाओं को जोड़कर नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। 15 जुलाई तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। रीप परियोजना से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा बड़ा बाजार। डोईवाला पेट्रोल पंप में प्रदेश का पहला हिनास आउटलेट खोला जाएगा। प्रदेश में कल शून्य से 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी, सभी तैयारियां पूरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत की इस पावन बेला का शुभारंभ कर रहे हैं रसिक पूरन के स्वर में इस मधुर भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, भक्ति संगीत की इस पावन बेला को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं रवि के स्वर में ये मधुर भजन।

श्रोताओं, रवि के स्वर में इसी मधुर वचन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 6:50 होने को हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायं के 6:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली माँ प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम अमगाई। पहली मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा को शुभारंभ करी। उन बोली अगले 2 सालों में देश भर का 500 शहरों और गांव में भारत टैक्सी को विस्तार किए जालू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल सुबेर आकाशवाणी का मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश का लुखू दगड़ अपना विचार रखला। प्रदेश में भोल 5 वर्ष तक का सभी बच्चों थे पोलियो की खुराक पिलाई जाली। उत्तरकाशी जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज, 90% डिजिटाइजेशन पूरू। और राज्य में भोल बटी मानसून की दस्तक का आसार, पर्वतीय जिलों का वास्ता येलो अलर्ट जारी। भारत टैक्सी और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बोली कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगला 2 सालों में देश भर का 500 शहरों और गांव में विस्तार करे जारू। भारत टैक्सी का उद्घाटन सत्र में श्री शाह ई पहल थे सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताई। उन बोली कि भारत टैक्सी को उद्देश्य चालकों तय सीधो लाभ पहुँचे की निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कंजा। उन बोली कि यहाँ से चालकों थे उनका पारिश्रामिक को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल लो और यात्रियों थे भी सुविधा व किफायती यात्रा को लाभ मिल सकलो। प्रधानमंत्री मोदी भोल सुबेर आकाशवाणी का मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश का लुखू दगड़ अपना विचार रखला। यू मासिक रेडियो कार्यक्रम को 135वां एपिसोड होलू। कार्यक्रम को प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन का सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल

0: ऐप पर करे जालू। दगड़ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यूट्यूब चैनलों पर यहाँ का सीधा प्रसारण भी होलू। हिंदी प्रसारण का तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम को प्रसारण होलू। प्रदेश में भोल 5 सालों तक का सभी बच्चों थे पोलियो की खुराक पिलाई जाली, यहाँ का वास्ता सभी तैयारियां पूरी वे गई। ये कार्यक्रम में चंपावत जिला में 269 पोलियो बूथ बनाया छन, जख 27,301 बच्चों थे पोलियो की दवा पिलाण को लक्ष्य निर्धारित करे गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठिन बताई कि 29 और 30 जून खुण आशा कार्यकर्ता घर घर जाए कि 5 साल तक का बच्चों थे पोलियो की खुराक पिला ली। ये का अलावा भोल मोबाइल बूथ का माध्यम से यात्रा करना बच्चों तय भी पोलियो की दवा पिलाई जाली। डॉक्टर राठिन अभिभावकों से अपील करी कि वो अपना 5 वर्ष तक का सभी बच्चों थे पोलियो की खुराक जरूर पिलाया, ताकि उन्हें पोलियो जन गंभीर बीमारी बटी सुरक्षित रखे जा सकू।
1: मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अपने बच्चों को बिना पोलियो ड्रॉप के ना रखें, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर का कोई भी अंग जो है वो बेकार हो सकता है और वो जिंदगी भर बेकार रहेगा, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्रिकॉशन ही बचाव है।
0: भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती 2026-2027 का तहत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का बाद अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई। सामान्य प्रवेश परीक्षा को परिणाम घोषित होने का बाद जुलाई का दूसरा हफ्ता बटी अल्मोड़ा जिला का रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करे जाली। थल सेना भर्ती कार्यालय का ARO कर्नल महेश कुमार ने बताई कि ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। परिणाम जारी होते ही शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू करे जाली। उन बताई कि ये परीक्षा में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर का अभ्यर्थियों का दगड़ा दगड़ी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की केंद्रीय श्रेणी का अभ्यर्थी भी शामिल होला। कर्नल महेश कुमार ने बोली कि पूरी भर्ती प्रक्रिया थे पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराण का वास्ता सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वे गई।
2: ARO की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर एंड उधम सिंह नगर के उन सभी कैंडिडेट्स को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं जिन्होंने अभी 12 जून को कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम अग्निवीर का कंप्लीट किया है, कि हमने इन बच्चों के लिए मिड जुलाई के बाद रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में उनकी फिजिकल की रैली की तैयारियां पूरी कर ली है। सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एग्जाम के बाद अपने फिजिकल्स को कंटिन्यू रखें, जिससे कि मिड जुलाई के बाद जो हमने किया है फिजिकल रैली का, उसमें बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उत्तरकाशी जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी छ। निर्वाचन विभाग की टीम मतदाता सूची का शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशन को काम तेज से पूरु कनाछन कनमा लगी छ। जिलाधिकारी प्रशांत आर्यन बताई कि जिला में अब तक लगभग 90% डिजिटाइजेशन को काम पूरु हो गई। कई मतदान केंद्रों पर यू काम 100% पूरु करे गई। उन बताई कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र में सबसे तेज प्रगति दर्ज करे गई, जख 45 मतदान केंद्रों में डिजिटाइजेशन को काम पूरी तरह से हो गई। उखी यमुनोत्री विधानसभा का 41 और गंगोत्री विधानसभा का 18 मतदान केंद्रों पर भी 100% शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशन को काम पूरु हो गया। जिलाधिकारी ने विश्वास जताई कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का सभी कार्य निर्धारित समय सीमा का भीतर पूरा वे जाला।
4: टोटल जो वोटर्स हैं उत्तरकाशी जनपद में वो 2,42,000, तो उसके हिसाब से सभी लोगों का SIR का डिजिटाइजेशन प्रोसेस है। इस समय डिजिटाइजेशन में जो उनके इन्यूमरेटर फॉर्म्स हैं उसको हम डिजिटाइज करके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लगभग 90% डिजिटाइज हो गए हैं इसमें, और 25,000 बचे हैं जो 2 दिन में हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बूथ लेवल एजेंट हैं, उन लोगों के साथ हमारे BLO संपर्क कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग यहाँ संपर्क में रहते हैं, उनको अवगत करा रहे हैं SIR के बारे में, और यह काम समय से अपना पूर्ण होगा। 8 जुलाई से नोटिसेस और नोटिस का जवाब देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि एक महीने की रहेगी।
0: अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में यातायात व्यवस्था है सुगम बनाण का वास्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की द्वि प्रमुख सड़क परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच गई। NHAI के अनुसार 51 किलोमीटर लंबी 6 लेन स्पर टू हरिद्वार परियोजना को लाभ 92% काम पूरु वे गई। ये के अलावा 86 किलोमीटर सड़क को निर्माण पूरु करे गई। ये मार्ग दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारों थे हरिद्वार से जुड़लू जहाँ से यात्रा अधिक तेज और सुगम होली। ओके 15 किलोमीटर लंबा हरिद्वार बाईपास परियोजना का प्रथम चरण को लगभग 70% काम पूरु हो गया। ये चरण में अब तक 9 किलोमीटर फोर लेन सड़क को निर्माण करे गया। NHAI को लक्ष्य अर्धकुंभ 2027 से पहले द्वि परियोजनाओं थे पूरु करी हरिद्वार में सुरक्षित आधुनिक और सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराण जा। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन की परिस्थितियां अनुकूल वे गई। मौसम विभाग के अनुसार अगला 2 से 3 दिनों में मानसून राज्य का कुछ हिस्सों में पहुंच सकदू। यहाँ थे दिख दी बगत पर्वतीय जिलों का वास्ता गगड़ाट चमकियाट तेज बरखा और झोंकदार हवाओं को येलो अलर्ट जारी करे गया। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियालन बताई कि भोलबटी कुमाऊं मंडल का अधिकांश जिलों और गढ़वाल मंडल का कुछ क्षेत्रों में बरखा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना चा।
5: 28 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख में उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 29-30-1 में उत्तराखंड में कह सकते हैं मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो अगले 1-2 दिन जो है आज कल में जो है देखेंगे कि गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर जो विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के वहां मिल सकती है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा को शुभारंभ करी। उन बोली अगला 2 सालों में देश भर का 500 शहरों और गांव में भारत टैक्सी को विस्तार किए जालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल सुबेर आकाशवाणी का मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश का लुखों दगड़ अपना विचार रखला। प्रदेश में भोल 5 वर्ष तक का सभी बच्चों थे पोलियो की खुराक पिलाई जाली। उत्तरकाशी जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज 90% डिजिटाइजेशन शुरू और राज्य में भोलबटी मानसून की दस्तक का आसार पर्वतीय जिलों का वास्ता येलो अलर्ट जारी। यहां का दगड़ा ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक भी समाप्त हुई। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने से बस श्रोताओं के श्याम भटुक नमस्कार श्रोताओं स्वागत छापू सब लोग न हमारे आज कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमारे देश में एक बखत ऐसी जब हमारे देश में उगाई जाने वाले अनाज में कमी देखने का मिल ची और हमू के भारत देशों बठी वी का आयात करन पड़ चु, लेकिन वी बाद जब कृषि क्रांति बहते वी में कृषि उत्पादन का बढ़ोनक लीजिए हमारे खेत बाड़ में ध्यान दी गो और वी में उर्वरकों द्वारा जो उत्पादन से वी का बढ़ोन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। उर्वरकों में नाइट्रोजनक पूर्ति के लीजिए यूरिया सबसे ज़्यादा उपयोग करी जाए। अगर हम देखो तो जो सामान्य यूरिया है वी में एक ठूल भाग जो पौधों द्वारा उपयोग करी जाने पहली हो पानिया माटक माध्यम नष्ट ले जाए वी के अलावा

वायु फसलों के लाभ पूछो ना, दगड़ कहन कह पर्यावरण के लिए नुकसानकारी हो चु। एक जग में नीम कोटेड यूरिया अगर उपयोग में लाई जोते यू फसलों के लिए और भी दगड़ पर्यावरण के लिए लाभदायक है सकते। बात करूँ नीम कोटेड यूरिया के, यू इस यूरिया हूँ जैक जैक दानों में नीमक तेल या फिर नीम आधारित जन पदार्थ होना उन्हों परत चढ़ाई जाए और यू परत यूरिया नाइट्रोजनक उत्सर्जनक गति का नियंत्रित कर छू जल की पेड़ पौधों के या फिर जिन फसल से उनका लंबे वक्त तक जो आवश्यक पोषक तत्व से उन मिलते रहना। और एक प्रयोग जो नाइट्रोजन की बर्बादी है उन्हें कम है जाए वी के अलावा जो पौधे द्वारा वीक बेहतर से उपयोग ले सक छू ये फसल में वृद्धि ले हूँ और भी मैं उत्पादन बढ़नक दगड़ भी गुणवत्ता मिले सुधार हूँ और किसानों का कम मात्रा में यूरिया प्रयोग करना पड़ छू जल की उन्हों खेतबाड़ी की लागत ले घट छे। विगत गड़ियों मटक उर्वरता बनाए रखने में सहायक हूँ और जमीन ताव पाई जन्ने वाले जो पैन हूँ वी के बनाए रखने में और पर्यावरण प्रदूषण के कम करने वाले योगदान दे छू। एक अलावा नीमक परत कुछ हानिकारक कीटों या फिर सूक्ष्म जीवों के लिए नियंत्रित करने में सहायक हूँ और हमारे फसलों की रक्षा कर छी। खेतबाड़ में नीम कोटेड यूरिया का उपयोग धान गेहूँ मक्का गन्ना दलहन फसलों तिलहन फसलों या फिर सब्जियों दगड़े और फसलों में करी जा सकते। यू संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन का बढ़ावा दीज और खेती जो प्रणाली से भी कह टिकाऊ बनून मले योगदान दीज। वी के अलावा किसानों का आय बढ़ून और जन संसाधन जनों का भल उपयोग करने मले एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। हम समझ सकते कि अचानक वक्त में जो खेतबाड़ से भी कह प्रभावी बनून के लिए नीम कोटेड यूरिया एक भल उपाय है। ये बैठी फसलों उत्पादन बढ़न पर्यावरण संरक्षण मले महत्वपूर्ण योगदान देन वी के अलावा खेतबाड़ में लगने वाली जो लागत से भी कम करने मिले हम का लाभ मिल चुका। एक लीजिए हम के किसानों की जनसन उनके वैज्ञानिक सलाह द्वारा नीम कोटेड यूरिया प्रयोग करें जाए जल की खेतबाड़ ज़्यादा लाभ देने वाले टिकाऊ और पर्यावरण के लिए लाभदायक है सको। तो श्रोता यो तो छी कुछ बातचीत कार्यक्रम में अगिल बढ़नू और अपन लोगों का सुनू यो कुमाऊनी लोकगीत दीवान कनवाल और शंकर उप्रतीक स्वर में।

0: श्रोतायोग कुमाऊनी लोकगीत अनि आफ्नो लोक सुन्ने नगरक्षा दिवान कनवाल और शंकर उप्रतीक स्वर में कार्यक्रम में अगिल बढ़नु और आप लोगों के सुननु कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
2: छोटा किसान बने देश की शान।
1: पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, संध्या संवाद कार्यक्रम में अगले बढ़नु और अपने लोगों के सुनू। सरकार एक बार साल

0: हमें कित कृषि और सब्जी उत्पादन विषय पर रमा तिवारी दगड़ करी हुई प्रमोद पांडे की भेंट वार्ता।
1: श्रोताओ नमस्कार। श्रोताओ आज हमारे आकाशवाणी अलमाड़ा स्टूडियो में रही श्रीमती रमा तिवारी जो कि ग्राम सभा हरतोला विकासखंड रामगढ़ जिला नैनीताल रहनी छन। यो एक कृषक छन। रमा जी सबने पहले प्रश्न मेरा पूछना यो छ कि आजकल तुम्हारे खेत में क्या क्या हो रहा?
2: हमारे खेतों में आजकल बीन बोरा है, हूँ हरी मिर्च लग रहे, शिमला मिर्च लग रहे और आलू खुदाई तो है गए और गोभी लग रहे।
1: अच्छा, जो तुम कौन सा आलू खुदाई है गे? कतो आल भाई?
2: है कि नाल तो 4-5 कुंटल आल।
1: 4-5 कुंटल आल भाई, ते बी काम टिले? अच्छा,
2: ये बी हम काशीपुर से लाया।
1: को प्रजाति बीच के मालूम छे तूने? ते एक नक्के नाम छी
2: वो हॉर्टिकल्चर में आ और हम पहले तो वहीं पर मंगा और यो साल हम घर का बढ़ा रही थी।
1: घर
2: बी वाल भी
1: कसी बढ़ा तो भी
2: हम जो नन्नान वाल बी आलू उछे वो हम छोड़ दी हुई हम घर बीज बना दे ठूल ठूल वाल हमारे सब्जी काम है वो।
1: अच्छा, तो 4-5 कुंटल तुम्हारा आल भाव।

0: एक नक्के नाम छी
1: उ हल्दी कचर में आ और हमून पहले तो वहीं पे मंगा और यो साल हमून घर का बढ़ रही थी
0: घर भी
1: वाल भी
0: कसी बड़ा तो भी
1: हमून जो नन्नान वाल भी आलू उची वो हमून छोड़ दी हुई हमून घर बीज बना दे ठुल ठुल वाल हमारा सब्जी काम है वो
0: अच्छा तो चार पांच कुंटल तुम्हारा आल भाव
1: भाव
0: के भाव हिसाब वाल बेचा
1: रेट तो आई तो के पक्कन है तो आई हमून ने बेच रहा
0: अच्छा
1: आई रख रहा
0: और ये के अलावा साग पात जो तुम्हारा लगा रखो तय भी काम टिला जा
1: ये भी ला हम हल्दी पे मंगा
0: और अपन जो पुराण पुस्तैनी भी हूँ वीक इस्तेमाल नहीं करना
1: वीक तो की करनु पा बाजार में उन्हें वा आजकल सब चीज
0: हम तो ठीक लाग रहो छा हमारे वैज्ञानिक भी और तुम प्रयोग करना लाग रहो छा अच्छा एल जो तुम्हारे साग पात रहो कता लगी इंपोर्ट
1: वो फूल होने तैयारी है रहा
0: फूल होने की और ये के अलावा तुम्हारे जो गांव छे रामगढ़ जो इलाक छे वो बागवानी लीजी ले जानी जा वो का फल फूला पेड़ होनी के छन तुम्हारे पास फल फूला पेड़
1: हमारे पास खुमानी पेड़ छन आड़ू पेड़ छन पुलमा पेड़ छन सेव पेड़ छन
0: अच्छा तो जो पेड़न का काम टीला छा
1: यो पेड़ हम खरीदी पहली थे
0: अच्छा
1: फिर बाद में हम अपना हथल घर बनने करो
0: अच्छा घर बनने अच्छा मगर यो बताओ आड़ खुमानी तो एल पाक गिना लब
1: पाक बेर उते
0: चल गई तो कतो हगी
1: तो बाद में पत्ते चलो लाल तो की पत्ते चलो
0: आई थोड़ा नहीं करा की
1: थोड़ा आई रह रहे
0: अच्छा
1: थोड़ी कर है आधी कर है आधी आई रह रहे
0: शो तो आई है नहीं रह
1: शो आई नहीं रह शो बहुत टाइम चाहिए
0: कहाँ बेच लाई के
1: ये को हल्दवानी मंडी में
0: हल्दवानी मंडी में तो हल्दवानी मंडी में तुम खुद ले जा छा या वहाँ ठेकेदार है वही ले जाए
1: ना यहाँ हमारे घर में गाड़ी हूँ हम उसमें लोड कर लू
0: डबल सही मिल जानी
1: ठीक है मिल जानी हाल वाह हमको जो बताई जाऊंगी हमको पते से बाकी वो जानन जो खरीदनी हमको जो पर्चे मिलो हम एल जी वही सही है
0: अच्छा संतुष्ट छा
1: संतुष्ट छा पा
0: चलो बढ़िया बात है कि तुम संतुष्ट छा और ये के अलावा साग पात खेत तुम करना लाग रहे तुम्हें यहाँ धान और क्यों हूँ
1: ना हम हमारे सब बगीचे छे
0: के कारण मान छा ये
1: के कारण मान लो पहले पे बगीच भरी हुआ उनमें पानी छिने हमारे यहाँ पीने लीजिए पानी मिलन कब हम धान बुनो कब उसमें तो पानी छिने धान धान में पीने लीजिए पानी आते हुए जल सब बगीचे छन वहाँ
0: पानी की समस्या छ मतलब
1: पानी समस्या
0: तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लाभ के लिए नहीं उठोना
1: अब देखो घर घर जल वाले तो योजना आ रहा है हमारे यहाँ तक तो नहीं पहुँच रहे हो
0: मतलब आई तुम वहाँ तक नहीं पहुँची
1: हमारे यहाँ नहीं पहुँच रहा है
0: हर घर नल वाले मेरे पूरा मतलब यो कि हमन के जो सरकार द्वारा योजना चलाई जानी उन्हें फायदा उठाउन छे और इन्हें बारे में मालूम न करना छे ये कसी हमन के ये फायदा पूछ सको तो किसान सम्मान निधि मिले
1: हाँ मिलना को हमको तो आई मिलने रहे
0: और अपन फसल बीमा कर रखो
1: बीमा हो कर रहो
0: ये के अलावा खाद कौन डाल छा
1: खाद हम घर की जैविक खाद गोबर खाद डाल
0: गोर भैंस है
1: ना वो गोर छ
0: दूध है या
1: दूध आज हाँ है ही जब
0: काम इच्छा दूध के
1: वो डेरी में जा आचल डेरी में
0: आचल डेरी में और के भाव बेचा वहाँ दूध
1: दूध है जा पचास चालीस तक
0: पचास चालीस जस्ट तो एल फल फूल हरी
1: एल फल फूल
0: एल तुम्हारे कौ खुमाइन हरी आड़ हरी
1: पूरा एक आड़ ने चल रहा है घूमने वाल छा तैयार होना
0: तो तुम तो जब यो शहर है जाला तो तुम्हारे पकड़ पाक यो जब यो पाक जाला तो फिर तुम वहाँ खुद है बेरू उठे ले जानी इधर जो पहुंच तुम उद्यान विभाग बटे नहीं मिलना तुम गए
1: वहाँ पहले मिलो पहले पहले लगा हम था होल्ड का चार बार मिली पे
0: अच्छा पॉली हाउस कतो चार
1: पॉली हाउस ने मिल लो एक दो हरी योजना जी पहली मिली हुई आजकल नहीं थे
0: बर्मी कंपोस्ट आ खड़े चाहे
1: खड़े ना
0: नहीं था
1: ना
0: तुम गोबर की खाद
1: डालो गोबर की खाद डालो हरी पत्ती लो नो जंगल बटी विको खाद बोलो नो
0: कसी बोलो चाहे तेरा मका बताओ थे
1: जंगल में हम हरी पत्ती लो नो फिर वो हम काट नो फिर हम गोर भैंसों तली हुए गए
0: कदो दिन में तैयार है जा
1: रोज निकाल लो तैयार के हूँ एक जगह रख दी हूँ खाद जैविक खाद बोलने लिए जब बाद में फिर झाड़ू में डालना होगा
0: अच्छा बहुत से लोग कुने की बाजा जो पत्ते हुनी बाजा पत्ता जो खाद हूँ वो बहुत बड़ी मानी जा
1: बहुत बड़ी मान बिल्कुल
0: आपको एक शहर से था तो आपको ये एक बार में ज्यादा जानकारी हुई कि सही बात छो
1: सही बात है बिल्कुल बहुत बढ़िया खाद छे
0: ये के अलावा दाल हूँ
1: दाल थोड़ी बहुत हजे हो लगुली वाली है
0: जस राजमा छे
1: राजमा हो थोड़ी राजमा हजे थोड़ी एक लगुली पेड़ में वाली हजे वाली दाल है और दाल न हो
0: लोग गदू काकड़ लगा ली
1: लगा ली
0: कब तैयार फल तुम वहाँ
1: ये झाड़ू में हलो तैयार दू एक महीने बाद
0: झाड़ू में ये के अलावा और के हरा पे
1: और आजकल के नहरा तई चल लो आजकल बगीचा को हरा आजकल के चलो हाँ दो तीन महीने हमारे बगीचा में कट जानी फिर वो बाद साग सब्जी चले
0: दो तीन महीने बगीचन में तुम व्यस्त
1: व्यस्त
0: ये बात फिर साग सब्जी
1: साग सब्जी चला

0: शौक को बहन पाकनी
1: शो दी बहन बात पाकल हो
0: दी बहन बात पे अगस्त में यानी कि शौक है या तो और जो योजना सरकार द्वारा चलनी तो कोई योजना फैद नहीं उठो ना
1: के उठ रहो बहुन योजना फैद के नहीं उठ रहे
0: तुम मगर यो बताओ ने कि जब तुम यो सब साग सब्जी तुम्हें तैयार है जा कहाँ भी इका कहाँ बेचा
1: यकला हम हल्दी भेज दो
0: हल्दी तो इकला उसके लिए है नहीं यार
1: खुद ना गाड़ी हूँ घर फिर हम उम्मीद लोड कर लूँ गाड़ी बड़े बुढ़ी भी तैयार
0: कदों साल में बड़े खेत करते उड़ाओ सा
1: बहुत साल है कि खेत करते करते
0: तो पहले खेत जो पहले खेत ची और आज खेत है उसमें क्या अंतर देखो ना सा
1: अंतर बहुत छो पहले में बहुत हुनेर बा वो अब उस हूँ कहाँ लग रहा बारिश और मार उहजने गर्मी पड़ जने आदू भी उहजना फसल नुकसान हजना उम्मीद तो
0: जंगली जानवर ना आतंक
1: जंगली जानवर तो कम छन उतना
0: छन तो तुम हमारे जो और सुनने वाले श्रोता छन उनसे के कौन चाला ये कसी हमारे जो पहाड़े खेत छे उका बचाई जो आज हमारे खेत बंजर हुनी
1: बंजर हुनी बचाई जो जो भैर जरी उन घर उड़ चे अपन खेत करण चे तब वही देख रहे खोला भैर जब ये जला तो बंजर हले ही जो घर छन उन्होंने तो अपन खेत बात कर रहे कि जो घर ना तो नर खेत बंजर हरी उन्होंने ओण से अपन खेत देखण चे
0: सही बात आपको कौन छा कि हम उनके आपको खेत के छोड़ा नीचे
1: नीचे
0: और अपन खेत बड़ी जुड़ते रहूँ चे ताकि हमारे जो प्रकृति से हमारे जो छे वो बचल रहो और हम जो अनाज हमारे हो वो शुद्ध अनाज हम उनके खाने मिलो आज हम जो अनाज हम लुड़िया वो अनाज का सुई कैसे हमको मालूम नहीं
1: मालूम नहीं बिल्कुल
0: अच्छा गोर तुम कहो कि कतु दूध है जा
1: हमारे दो 7-8 लीटर दूध हजार हमें लीजिए
0: तो रमा जी तुम्हारे हम उनके जानकारी दे यह लीजिए तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद
2: श्रोताओ भेंटवार्ता में अन्य अपन लोग सुनने लग रहा अच्छा सरकारक बार साल समेकित खेती और सब्जी उत्पादन विषय पर रमा तिवारी तगर करी हुई प्रमोद पांडे की भेंटवार्ता।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल बढ़नु और करनु कुछ और बातचीत। श्रोताओं, हम जैसे देखनु, हम जैव भूमि में खेत करनु या फिर हमारे जो खेत बाड़ छे प्राकृतिक संसाधनों में आधारित छे, वो लगातार रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग है या फिर खेत बाड़ में न होने वाले फसल चक्र प्रभाव या फिर जो माटक भल देखभाल न होने, जो जमीन की उर्वरता है में कमी देखने को मिली। इस स्थिति में खेत बचाव अभियान के अंतर्गत हम बात कर ले मृदा परीक्षण की महत्व छिके। मृदा परीक्षण किसानों का अपन माटक वास्तविक स्थिति जानकारी दीवे संतुलित और वैज्ञानिक खेत अपनाने के लिए प्रेरित कर छु। बात करो मृदा परीक्षण ते, यू एक वैज्ञानिक प्रक्रिया छे जैक माध्यम माट में मिलने वाले पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों या फिर भी पीएच मान, जैमे कि माटक अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति का हम नापनों, वी के अलावा भी मैं पाई जाने वाले जन आवश्यक तत्व छन उन्हों परीक्षण भी मैं करी जाऊँ और एक आधार पर यू निश्चित करी जाऊँ कि जो खेत से भी मैं को पोषक तत्व कमी छन या फिर भी अधिकता छे या फिर कै मात्रा में भी मैं उर्वरकों या खादों का प्रयोग करें जाए को फसल भी मैं लगुन के लिए लाभदायक हो। और इमें किसानों का अपन भूमिक जो जमीन से भी मैं उर्वरता के लिए पत चल छूँ और इमें अनावश्यक खर्चले कम हो और इमें उत्पादन बढ़ने के लिए संभावना बढ़ सी। और अगर हम इमें मृदा परीक्षण करा भी पोषक तत्वों जो प्रबंधन से वीले बढ़िया करूँ तो जो माटक गुणवत्ता है वो लंबे टाइम तक बनने की रोज और ये फसल ले ज़्यादा स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण बनने की रोज। एक अदगर रासायनिक उर्वरकों जो ज़्यादा प्रयोग होने वाले पानी और पर्यावरण का प्रदूषण से भी मिले हम कमी ला सकूँ। हम समझ सकूँ कि जो मृदा परीक्षण से वह अचालक बखत में और टिकाऊ कृषि लीजिए बहुत जरूरी है। ये केवल माटक जाँच न,

कि खेतक जो स्वास्थ्य छे वीकली एक परीक्षण हम कह सकूं। और हर किसान के बखत बखत में अपन जो भूमि से वीक मृदा परीक्षण करावे, वीक अनुसार खेत भर करें जाए, एल माटले सुरक्षित रहो, युवठी उत्पादन ने बढ़ लो और लागत ले घट ली, वीक दगड़ जो हमारे आने वाली पीढ़ी छे उनके लिए जो उपजाऊ भूमि छे वीक सुरक्षा संभव है सकी। तो श्रोता बहुत अच्छी कुछ बातचीत, कार्यक्रम आगे बढ़नू और अब बात कर लूँ आजक मंडी भाव और मौसम सूचना की। मंडी भाव में हम बात कर लूँ अपन जो स्थानीय मंडी छे हल्द्वान वी में कुछ प्रमुख सब्जियों और फलों की न्यूनतम और अधिकतम कीमतें। बात करूँ पहली सब्जियों की, सब्जियों में कद्दू जो न्यूनतम मूल्य में गो 600 रुपये प्रति कुंटल और अधिकतम मूल्य 1000 रुपये प्रति कुंटल। वी के अलावा प्याज 800 रुपये प्रति कुंटल और अधिकतम मूल्य 1600 रुपये प्रति कुंटल है हिसाब से। फूल को 1500 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम मूल्य और 2000 रुपये प्रति कुंटल अधिकतम मूल्य। वहीं हरी मिर्च 1000 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम मूल्य और 1400 रुपये प्रति कुंटल अधिकतम मूल्य। आलू 600 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम मूल्य और 1400 रुपये प्रति कुंटल अधिकतम मूल्य। तोरई 1200 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम और 1800 रुपये प्रति कुंटल अधिकतम मूल्य हिसाब से। वहीं कुछ फल जिनमें क्या 800 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम और 1100 रुपये प्रति कुंटल अधिकतम। शो बात करूँ तो 8000 रुपये प्रति कुंटल एक न्यूनतम मूल्य गोच और 1000 रुपये प्रति कुंटल अधिकतम मूल्य। वहीं आम 1200 रुपये प्रति कुंटल न्यूनतम मूल्य और 2000 रुपये प्रति कुंटल अधिकतम मूल्य। तो श्रोताओ यो तो छी आज हमारे स्थानीय मंडी हल्द्वान में कुछ प्रमुख फलों और सब्जियों के जन भाव छी। वी के अलावा अब हम बात कर लूँ उन्नी वाले कुछ दिनों में हमारे राज्य उत्तराखंड में जो मौसम छे वीक कस देखने का हमको मिल जो। अगर बात करूँ तो मानसून का प्रभाव हमको कुछ दिनों में देखने मिल सकूँ और हमारे राज्य में एक उपस्थिति देखने मिल सकती। मैदानी जिलों जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल तराई क्षेत्र में दिनक बखत में गर्म या फिर उमस बनने रह सकती। दिनक बाद या फिर सांझक बखत कहीं कहीं हल्के बैठे मध्यम स्तर में बारिश और गर्जन और चमकने की संभावना से। वहीं पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बादल ज़्यादा सक्रिय रूप से देखने को मिले और कई जगहों में हल्की बैठे मध्यम बर्फ है, जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश, आकाश में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना से। भूस्खलन व आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने के लिए सलाह दी जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों के मौसम में ताज़ा जानकारी लिए रही यात्रा करने की सलाह दी जाए, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकते हैं और तेज बरखा के कारण यात्रा ले प्रभावित हो सकती है। तो श्रोता यो तो छी आज और उन्नी वाले कुछ दिनों में मौसम जो हाल छे हमारे उत्तराखंड में वो कसून छे। अब कार्यक्रम आगे बढ़ लूँ और आप लोगों का सुनू यो कुमाऊनी लोकगीत समृत स्वर में।

श्रोता समवेत शर्मा का यही कुमाऊनी लोकगीत गढ़ हमारा आजक किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न हो। हमारे कार्यक्रम का प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और प्रस्तुतकर्ता संजय जोशी एल अपन दगड़ी श्याम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने का आज्ञा दियो। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:30 होने को हैं। अब कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: आकाशवाणी देहरादून बठिक कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में देशक पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा शुभारंभ करो को अगिल दुई सालन में देशभरक 500 शहर और गांव में भारत टैक्सी विस्तार करी जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल रत्ते आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेशक जानिन थे अपन विचार साझा कराल। प्रदेश में भोल 5 साल तलक नांतिनों के पोलियो खुराक पिलाई जाली। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज, 90% डिजिटाइजेशन को काम पुर और राज्य में भोल बैठे मानसूनक दस्तक आसार, पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तारल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को की सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी को अगिल दुई सालन में देशभरक 500 शहर और गांव में विस्तार करी जाल। भारत टैक्सी उद्घाटन सत्र में श्री साहल यो को की सहकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम छू। उनल को की भारत टैक्सी को उद्देश्य चालकों को सिद्ध भैत पूजा बे निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करण छू। उनल को की येल चालकों के उनर पारिश्रमिक ज्यादे ज्यादे मिलल और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सस्त यात्रा फैद मिल सकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल रत्ते आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेशक जानिन थे अपन विचार साझा करल। यो महन रेडियो को कार्यक्रम को 135वां एपिसोड होल। कार्यक्रमों को प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन को सपे चैनल AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर करी जाल। दगड़े AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यूट्यूब चैनलों पर ले यह सिद्ध प्रसारण होल। हिंदी प्रसारण तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में ले यो कार्यक्रम को प्रसारण होल। प्रदेश में भूल 5 साल तलक को सपे नांतिनों को पोलियो की खुराक पिलाई जाली। यह लीजिए सपे तैयारियां पूर करी हालीन। यही क्रम में चंपावत जिले में 259 पोलियो बूथ बनाई गई जहां 27,301 नांतिनों के पोलियो की दवा पिलुणक लक्ष्य रख रखो। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराट राठिल यो बताए कि 29 और 30 जून के आशा कार्यकर्ता घर घर जाबे 5 साल तलक को नांतिनों के पोलियो की खुराक पिला ली और सभी अभिभावकों थे उन्हें अपील करी कि यो दवा उनके जरूर पिलाओ।
1: मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अपने बच्चों को बिना पोलियो ड्रॉप के ना रखें, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर का कोई भी अंग जो है वो बेकार हो सकता है और वो जिंदगी भर बेकार रहेगा, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्रिकॉशन ही बचाव है।
0: भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2026-27 तक तहत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद अब शारीरिक दक्षता की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई। सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद जुलाई

0: दूसर हफ्ते में अलमाड़ जिला के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में शारीरिक दक्षता की परीक्षा आयोजित करी जाली। थल सेना भर्ती कार्यालय को ARO कर्नल महेश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न है गई। परिणाम जारी होते ही शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी जाली।
1: ARO की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले चार डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर एंड उधम सिंह नगर के उन सभी कैंडिडेट्स को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं जिन्होंने अभी 12 जून को कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम अग्निवीर का कंप्लीट किया है कि हमने इन बच्चों के लिए मिड जुलाई के बाद रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में उनकी फिजिकल की रैली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एग्जाम के बाद अपने फिजिकल्स को कंटिन्यू रखें जिससे कि मिड जुलाई के बाद जो हमने प्लान किया है फिजिकल रैली का उसमें बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी छू। निर्वाचन विभागक टीम मतदाता सूची शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशनक काम झट्टपुरकरण में जुटी छू। जिलाधिकारी प्रशांत आर्यल बताए कि जिले में एल जाने लगभग 90% डिजिटाइजेशन को काम पूर है गयो। कई मतदान केंद्रों में यो काम 100% पूर कर हालो। उन्होंने बताया कि पुरौला विधानसभा क्षेत्र में सपन है तेज प्रगति काम है गयो और 45 मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन को काम पूर है गयो। वहीं यमुनोत्री विधानसभा 41 और गंगोत्री विधानसभा 18 मतदान केंद्रों में ले 100% शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशन को काम पूर है गयो।
3: टोटल जो वोटर्स हैं उत्तरकाशी जनपद में वो 2,42,000, तो उसके हिसाब से सभी लोगों का ऐसा या तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है। इस समय डिजिटाइजेशन में जो उनके इन्यूमरेटर फॉर्म्स हैं उसको हम डिजिटाइज करके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लगभग 90% डिजिटाइज हो गए हैं इसमें और 25,000 बचे हैं जो 2 दिन में हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बूथ लेवल एजेंट हैं उन लोगों के साथ हमारे BLO संपर्क कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग यहाँ संपर्क में रहते हैं, उनको अवगत करा रहे हैं इस ऐप के बारे में और यह काम समय से अपना पूर्ण होगा। 8 जुलाई से नोटिसेस और नोटिस का जवाब देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 1 महीने की रहेगी।
0: अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में यातायात व्यवस्था के सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 प्रमुख सड़क परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच गईं। NHAI के अनुसार 51 किलोमीटर लंब 6 लाइन स्पर टू हरिद्वार परियोजना का लगभग 92% काम पूर है गयो। यह के भीतर 46 किलोमीटर सड़क का काम पूर कर हालो और यो बाट दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा के हरिद्वार बठे जोड़ल जैल यात्रा ज्यादा तेज और सरल है जाली। वहीं 15 किलोमीटर लंब हरिद्वार बाईपास परियोजना का प्रथम चरण का काम लगभग 70% पूर है गयो और पहली द्वीय परियोजनाओं को पूर कर बे हरिद्वार में सुरक्षित आधुनिक और सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध करूण छू। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसूनक उड़ल परिस्थितियां अनुकूल है गईं। मौसम विभाग के अनुसार अगिल 2-3 दिनन में मानसून राजक को जागन में पुज जाल। जगह दिगबेर पहाड़ी जिलों के लीजी घोड़ाट मोड़ा चाल चमकण तेज बर्फ और बयाव के लीबेर येलो चेतावनी जारी कर रखी। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियालल बताए कि भोलबठे कुमाऊं मंडलक अधिकांश जिल व गढ़वाल मंडलक कुछ जागन में बर्खक गतिविधियां बढ़ने अंदाज छू।
4: 28 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 28 तारीख में उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 29-30-1 में उत्तराखंड में कह सकते हैं मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो अगले 1-2 दिन जो है आज कल में जो है देखेंगे कि गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर जो विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के वहां मिल सकती है।
0: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 30 जून के पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिले में कह के बहुत तेज बर्फ होने का अंदाज जता रखो। खराब मौसम की आशंका के दिगबीर मौसम विभागल जाने थे होशियार रूण और जरूरी सावधानी बरतने के लिए अपील कर रखी। मौसम विभाग कूण छे की अघिन 3-4 दिन तक तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहा। हालांकि यह के बाद तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज करी जाली। चमोली जिला नारायणबगड़ मुख्य बाजार में अतिवृष्टि के बाद राहत बचाव और

0: सफाई काम युद्ध स्तर पर जारी छू। जिला प्रशासनक अनुसार घटना में कोई प्रकारक जनहानि और पशुहानि नहीं भे। बेई देर रात भे अतिवृष्टि कारण देवसल्ला गांव बठे भारी मात्रा में रियाड़ भ्याड़ नारायण बगड़ मुख्य बाजार में पुज गयो। जेल बाजारक एक हिस्से प्रभावित है गयो। मलबा की चपेट में उड़ल सड़क किनार थड़ कुछ द्विपहिया और चौपहिया वाहनों में मलबा भर गयो, जबकि कुछ दुकानों में ले पानी और मलबा घुस गयो। जिले प्रशासन पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम राहत बचाव और पुनर्स्थापन को काम में जुटी छू। प्रशासनक अनुसार अतिवृष्टि कारण पेयजल आपूर्ति अस्थायी रूप बाधित भेजे, जगह शुरू करण काम तेजील जारी छू। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में देशक पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा शुभारंभ करो को अगिल द्वि सालन में देशभरक 500 शहर और कस्बों में भारत टैक्सी विस्तार करे जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल रत्ते आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेशों को जानिन थे अपन विचार साझा करल। प्रदेश में भोल 5 साल तलक सपे नांतिनों के पोलियो खुराक पिलाई जाली। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण को अभियान तेज, 90% डिजिटाइजेशन को काम पूर। और राज्य में भोलबठे मानसून की दस्तक का आसार, पहाड़ी जिलन में येलो चेतावनी जारी। यह कदगढ़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यों खत्म हूं। नमस्कार।
1: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:40 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज कर रहे हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के खूबसूरत से गीत के साथ। आवाज़ है कमाल खान की और समीर के लिखे इस गीत को सरगम में बांधा है जतिन ललित ने।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

श्रोताओं, आइए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल चाहता है का ये गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में फिल्म कॉकटेल का ये गीत। इरशाद कामिल की शब्द रचना है और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के समापन में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत। आवाज़ है विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल अमानत अली की। अन्विता दत्त ने गीत लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: श्रोताओं, फिल्म दोस्ताना के इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। अंबिकापुर नगर निगम के गार्बेज कैफे प्रभारी श्री रितेश सैनी से भेंटवार्ता।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहाँ पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये दिशा रहा है?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहाँ पे दीदियाँ जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहाँ पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहाँ सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन, जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी

0: जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ सब मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं, वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथककरण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक अलार्म सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है। उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019। उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे फैनी जी आप।
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर वो 30-40 रुपए किलो में जा रही है। सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए में मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पर रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रीडिंग आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे।
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय ने कहा बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है

0: इडली खाने का मन है तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप दो टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहाँ प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीज़ों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारी चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रेड पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा पड़ेगा, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज़ करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज़ कीजिए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल लगता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे हैं या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: इससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर से अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है कि रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है।

0: पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज। तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है, गार्बेज कैफे संचालन का एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लो कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूँ, ये बिड का आधार था। न कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में दूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, जो मंथली रेंट है ना,

0: प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लो कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूँ, ये बिड का आधार था। न कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में दूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा। लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया, यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना और वो सीधे दाना बन जाएगा। तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22, तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है। मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व है इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी इन लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है। तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
1: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं डालते जाएं, वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी कुछ।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा

0: वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे उसमें, बांग्लादेश से लंदन, इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान, कोरिया, यहां से
0: सभी
1: भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी,
0: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पे ले रहे हैं। और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी।
3: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए अब पेश है गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रवि की गाई इस गजल के साथ।

श्रोताओं, दीपा पाठक की गाई इसी गजल के साथ हमारा आज का गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को है। अब स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आज की मुख्य थर्टी टू में पहुंचे FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। तो शुरू करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप के साथ, जहां पर आज ग्रुप एल में पनामा और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। वहीं दूसरे मुकाबले में इसी ग्रुप के क्रोएशिया और घाना का मैच खेला जाना है। दोनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से खेले जाएंगे। वहीं इससे पहले मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं विश्व कप में कल खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
1: फीफा विश्व कप के ग्रुप मुकाबले अब अपने अंतिम दौर में हैं और नॉकआउट की रफ्तार पकड़ती दौड़ ने विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर पहुंचा दिया है, जहां हर मुकाबला किसी न किसी टीम के भाग्य का फैसला कर रहा है। इसी कड़ी में ग्रुप जी में मिस्र और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा।
2: The final whistle blows. Two teams that gave it everything here. What a game. What drama in Seattle.
1: और इस ड्रॉ ने मिस्र को विश्व कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। ग्रुप जी में मिस्र दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा, जबकि ईरान तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि ईरान की नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। महमूद साबेर ने मुकाबले के 5वें मिनट में ही पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि ईरान ने जल्द ही पलटवार किया और मैच के 14वें मिनट में रमीन रेजाइन ने गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन ये रोमांचक मुकाबला इसी स्कोर पर समाप्त हो गया। इस ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 5-1 से हरा दिया। बीसी प्लेस स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। वहीं न्यूजीलैंड का अगले राउंड में पहुंचने का सपना टूट गया है। उधर ग्रुप एच में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं उरुग्वे का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमों के गोलकीपरों ने दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि मैच के 42 मिनट में स्पेन की टीम आखिरकार 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही। बिना ने बॉक्स के किनारे से जगह बनाते हुए तेज शॉट लगाया, जो उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा को चकमा देकर गोल पोस्ट में पहुंचा। इसके बाद स्पेन ने ये मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया।
2: Alex

0: अन्य रोमांचक मुकाबले में केप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के साथ ही फीफा विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। ग्रुप एच में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केप वर्डे का राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन अर्जेंटीना से सामना होगा। ये उनके देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मैच होगा। केप वर्डे अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में बिना कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: और अब फुटबॉल के बाद बात करते हैं हॉकी की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 के बड़े अंतर से रौंद दिया। लंदन में खेले गए मुकाबले में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और एक के बाद एक विपक्षी टीम के गोल पोस्ट पर 7 गोल दागे।
2: लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर्स में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एक तरफा दबदबा देखने को मिला। पहले पाकिस्तान से 1-0 से पिछड़ने के बाद हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्षी टीम चारों खाने चित हो गई। भारत ने दूसरे और क्वार्टर में लगातार अंतराल पर गोल करते हुए मुकाबले में अपना दबदबा हराया। भारत ने मैच के दौरान 36 बार पाकिस्तान के सर्कल में प्रवेश किया और 13 पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए, इनमें से 3 पर गोल करने में सफलता मिली। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 18 बार भारतीय सर्कल में प्रवेश किया, लेकिन वह कोई फील्ड गोल नहीं कर सका। भारतीय मिडफील्ड में हार्दिक सिंह और मनप्रीत सिंह ने शानदार खेल दिखाया, वहीं अभिषेक दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने लगातार पाकिस्तान के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। मैच की शुरुआत में पाकिस्तान ने बढ़त बनाई और 13वें मिनट में अबू महमूद ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर में शानदार वापसी की और 19वें मिनट में सुखजीत सिंह ने बराबरी का गोल किया। इसके बाद 26वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। 34वें मिनट में मिले पेनाल्टी स्ट्रोक पर हार्दिक सिंह ने एक बेहतरीन गोल किया। इसके ठीक एक मिनट बाद तेज काउंटर अटैक पर जुगराज सिंह ने चौथा गोल दागकर भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया। 41वें मिनट में सुखजीत सिंह के शानदार पास पर अभिषेक ने गोल कर स्कोर 5-1 कर दिया। 44वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक पर मिले रिबाउंड को राजकुमार पाल ने गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 6-1 कर दिया। मैच के 54वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने शानदार मूव को गोल में तब्दील करते हुए मैच में भारत के लिए 7वां गोल दागा। ये हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार 17वीं जीत है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में स्पेन से आगे 7वें स्थान पर आ गया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक बेहद शानदार जीत और एक ऐसी ही जीत का इंतजार भारत को इस समय अहमदाबाद में है, जहां इस समय ABC मेंस वॉलीबॉल कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जब तक ये मैच के लिए समाचार लिखे जा रहे थे, भारत ने पहला सेट अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद इंडोनेशिया ने लगातार 2 सेट जीते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के ऊपर एक खास जानकारी लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, सेमीफाइनल मुकाबला एक कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है, लेकिन ग्रुप स्टेज भारतीय टीम ने करिश्माई प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे?
0: जी शक्ति, भारत का सेमीफाइनल तक का ये सफर टीम की करिश्माई खेल की कहानी को बयां करता है। भारत ने ग्रुप स्टेज के सभी 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। और शक्ति, इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि भारतीय टीम ने इन 5 मुकाबलों के दौरान मात्र 1 सेट ही गवाया है। भारत ने पहले न्यूजीलैंड को, फिर कजाकिस्तान को 3-0 से हराया, इसके बाद चीनी ताइपे को 3-1 से मात दी। सबसे अनोखा पल टूर्नामेंट का शक्ति ये आया कि भारत ने गत विजेता बहरीन को 3-0 से मात दी। इसके बाद अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 से आसान जीत दर्ज कर ली।
1: जी बिल्कुल, मात्र 1 सेट गवाया था भारत ने ग्रुप स्टेज में। क्या फैक्टर्स एनालिसिस किए जा रहे हैं भारत की इस परफॉर्मेंस पे, जो कि रेवोल्यूशनरी चेंज है ये?
0: जी, सबसे बड़ा फैक्टर की अगर हम बात करें, जो उनके कोच है, और मैं श्रोताओं को बताना भी चाहता हूँ कि उनका आज जन्मदिन भी है, और कोच जो है वो ड्रैगन मिहेलोविक है, जिन्होंने बेहतरीन नेतृत्व किया है, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें चिराग यादव, जोएल बेंजामिन जेब्राम, जेरोम चार्ल्स विनीत और सेटर अप्पुवापु मुथुस्वामी जैसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम के रैंकिंग को भी सुधारा। इस टूर्नामेंट में जब टीम आई थी तो

0: 57वें पोजीशन पे थी, लेकिन अब टीम की जो रैंकिंग है वो 42वें पोजीशन पे है। और रैंकिंग का ये फायदा मिलता है शक्ति की आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी जो भारत अच्छा कर सकती है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकती है।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रशांत। तो भारत को उम्मीद होगी कि ऐसा ही प्रदर्शन सेमीफाइनल में टीम करे और वापसी करते हुए फाइनल तक का सफर तय करे। और अब बात बैडमिंटन की, जहां देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
2: थाईलैंड मास्टर्स की विजेता देविका सिहाग ने बड़ा उलटफेर करते हुए जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी को हराकर यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। देविका ने महिला क्वार्टर फाइनल में दोनों गेम के अंतिम क्षणों में संयम बनाए रखते हुए गुंजी को 22-20, 21-19 से हराया। अब सेमीफाइनल में देविका का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। डेनमार्क की इस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा को 21-16, 11-21, 21-11 से हराया था। वही महिला सिंगल्स के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रक्षिता श्री को कनाडा की राहेल चांद से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष सिंगल्स में अनुभवी किदांबी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लियाओ झू फू को 21-9, 12-21, 21-8 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्रीकांत अब सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो का मुकाबला करेंगे। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिलब्रमेन को 23-21, 21-11 से पराजित कर पहली बार किसी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में रौनक का सामना चीन के ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू ली यांग से होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब कार्यक्रम में
2: सू ली यांग से होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब कार्यक्रम में बात महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की, जहां कल अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू कल अपना अंतिम ग्रुप स्टेज मैच खेलने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर उतरेगी, जहां उनके सामने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती होगी। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश पर एक आसान जीत दर्ज की है और टीम के हौसले एक बार फिर बुलंद होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने अपने सभी मैच बड़े अंतर से जीते हैं और एक मजबूत रन रेट के साथ ग्रुप में टॉप पर है। सोफी मिलिनियो की अगुवाई में 6 बार की T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने नाम के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है। अगर वो ये मैच हारती भी है तो भी उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना भारत की तुलना में काफी आसान है। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है और इस हार से भारत की रन रेट पर भी असर पड़ा है। भारत अपने 4 में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने 4 के 4 मैच जीत कर शीर्ष पर है। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर टीम की खिलाड़ी राधा यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: कोई भी ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं मुझे नहीं करना, मतलब लोग जा रहे रूथलेस प्रैक्टिस कर रहे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट गेम है, कितना एक दूसरे को साथ में रखना है और एक दूसरे का प्रेशर थोड़ा नीचे को हटाना है, तो उस पे ज्यादा फोकस है।
3: भारत को अपने इन फॉर्म खिलाड़ियों से इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर होगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा से टीम को खास उम्मीद रहेगी। इनके अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया पर भी नजर रहने वाली है। गेंदबाजी में लगातार बेहतर कर रही श्रीचरणी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, जिन्हें राधा यादव, नंदिनी शर्मा और रेणुका ठाकुर का साथ मिलेगा। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इस टीम की नज़र दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में हुई गलतियों को सुधार कर अपने पहले T20 विश्व कप खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय टीम लॉर्ड्स के इस मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर इस लक्ष्य पे भी होगी कि किस तरह से इस सफर को ऐसा बनाया जाए कि 5 जुलाई को वापस टीम फाइनल खेलने के लिए इसी मैदान पर उतर सके। और हरमनप्रीत कौर की आर्मी अपनी गलतियों से सीख लेते हुए कल ऑस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करना चाहेगी। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत को आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट

में सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड के 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 18 ओवर और 5 गेंद में 148 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। ये पहला मौका था जब आयरलैंड ने भारत को किसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हराया है। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में सर्वाधिक 50 रन बनाए। वहीं आयरलैंड की तरफ से मैथ्यूज हम्फ्रीज ने 3 और मैथ्यूज हॉलार्ड ने 3-3 विकेट लिए। हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगर आयरलैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो लॉकरेन टकर ने टीम के लिए 36 गेंदों पर 50 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसने टीम को एक अच्छी बुनियाद दी और मध्यक्रम को मजबूती दी, जबकि गैरेंथ डैनली के 49 रन ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को इसी मैदान पर खेला जाना है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड का रुख करेगी, जहां पर भारतीय टीम पहले 5 टी20 मुकाबले खेलेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का स्पोर्ट्स कैन के इस कार्यक्रम में। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें हमारे स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार

0: विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली MDMK पार्टी ने DMK के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि MDMK को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। MDMK के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश

0: कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंग

0: and laser radial boats to Seychelles for its development and security. From Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म आर पार के इस गीत के साथ। आवाज है गीता दत्त की। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया है OP नैयर ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं मिस्टर एंड मिसेस का ये गीत। आवाज़ है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह की लिखी इस शब्द रचना को संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आराधना का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है SD परमन का।

श्रोताओं, फिल्म आराधना के इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, सागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप

0: होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं, वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित, जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा यह है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और डेथ हो गई, तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं। लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी और

0: जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
0: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
0: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है, इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है। तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
0: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है।

0: प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
0: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम FTTH ब्रॉडबैंड समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
2: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर GV राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
3: डॉक्टर जी वी राव जी। चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
4: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप, जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है
3: जी।
4: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
3: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जी वी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुक करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केन्या और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
2: He was initiated by Shri Dulal Roy.
1: He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by मुस्तफा हुसैन। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावे भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत।